श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा करा।

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos.
1: Catch the rain, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
4: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
3: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा

0: गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
3: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है, हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है, आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
6: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
5: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
6: Peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security since the very inception of the United Nations. And India has always been in the forefront of discharging that responsibility. Our cumulative contribution is nearly 300,000 deployments in about 50 missions worldwide. Currently, we have 4,300 personnel across 10 of the 11 active missions. As we all know, most of these missions are in Africa. Few countries would have our experience in preparing peacekeeping to be future ready.
5: If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near the Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. State governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been asked to coordinate with the bereaved families for the onward transportation of the bodies to their hometowns. Indian Embassy in Vietnam has also expressed

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सर गंगा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुप्रिया मैत्र से ध्रुपद गायन, राग था आहिर भैरव। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान के साथ साथ स्किल्स यानी कौशल का होना बेहद जरूरी है। आज के समय में नौकरी और करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार नई स्किल्स सीखना, स्किल डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में कौशल विश्वविद्यालयों का विचार सर्वप्रथम भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में प्रस्तावित किया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व विषय पर लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता। मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय MSU सिक्किम के संस्थापक और कुलाधिपति प्रवेश दुदानी से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: प्रवेश दुदानी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिग्री और रोजगार के बीच में अंतर दिख रहा है, और जब सीखने की प्रवृत्ति में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उससे एक भय भी है कि ये शायद रोजगार को छीन लेगा या कम कर देगा भारत जैसे बहुत जनसंख्या वाले देश में। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि किस तरह से स्किल्स की जरूरत है, और स्किल्स यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो किस तरह का होना चाहिए?
2: मैं लास्ट 20 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और रोजगार अलग अलग नहीं चलना चाहिए। आज हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में उच्च शिक्षा की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, लेकिन अगर डिग्री विदाउट इंडस्ट्री या डिग्री विदाउट स्किल्स अगर है तो वो आज हमारे युवाओं को एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है, ना कि उनको इम्पावर करता है। तो मुझे लगता है कि आज अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स को जोड़ते हैं तो ही वो हमारे युवाओं को एक सही रास्ता, सही दिशा दिखा सकता है कि उनका जीवन, उनका करियर किस डायरेक्शन में उनको लेके जाना है। जैसे AI की जो आपने बात करी, लास्ट 2 सालों में AI ने पूरा का पूरा जॉब का जो सिनेरियो है, मार्केट है, उसको पूरी तरह से बदल दिया है। लोग ये भी बात करते हैं कि शायद जॉब्स कम हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब का जो रूपरेखा है वो बदलेगा। एक ह्यूमन टच रिक्वायर्ड होती है हर एक चीजों में, वो चीज कभी भी AI उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको पूरा खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन जो आज ऐसी चीजें जो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट कि आप लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आसपास में लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं, ऐसी क्या सिस्टम बना रहे हैं जिससे लोगों की प्रगति हो, इन चीजों को सोचना और डिजाइन करना में ज्यादा लोग अपना समय लगाएंगे, ना कि एक नॉर्मल डे टू डे बार बार रिपीट करने वाले टास्क होते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोडिंग बहुत लोग सीखते थे जिसमें काफी टाइम लगता था, इसीलिए पूरे देश में कंप्यूटर साइंस एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। लेकिन आज के दिन में जो काम कोडर्स 1 महीने में करते थे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको 1 घंटे में कर दे रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे इंजीनियर्स जो कंप्यूटर साइंस को AI की नजर से सीखते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें करिकुलम आउटडेटेड हो गया है। वो जिस तेजी से इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है उसके साथ नहीं चल पा रहा है करिकुलम।
1: तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, क्या उसमें आपका कहना है कि उसमें और सुधार की जरूरत है?
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक पूरी गेम चेंजिंग, एक बहुत बड़े बदलाव लाने का शक्ति के साथ उसको लाया गया 2020 में, और जिसमें एक सबसे बड़ा पहलू था कि स्किल्स यानी कि जो इंडस्ट्री को जो स्किल सेट और वोकेशंस चाहिए वो हायर एजुकेशन के साथ चलना चाहिए। इसके पहले तक स्किल और वोकेशन यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो या आपकी ITI एजुकेशन हो, उसको उच्च शिक्षा से हमेशा अलग रखा गया। लेकिन नई शिक्षा नीति में इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि उसको साथ कैसे लेके चले, एक ओवरऑल वेल राउंड डेवलपमेंट हो सके बच्चों का, और इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री को दोबारा ट्रेनिंग ना करना पड़े उनकी। आप ये भी देखें कि आज पूरे हमारे इंडिया में आज अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि जो जितने बच्चे स्कूल से निकलते हैं उसमें से कितने बच्चे उच्च शिक्षा में जा पाते हैं, उसमें से हर 4 में से सिर्फ 1 बच्चा ही उच्च शिक्षा में एनरोल करता है।
1: निश्चित रूप से खास करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का ये कहना है कि अनुसंधान में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और वो बीच में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के बाद वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक बात आती है, आपने IIT खड़गपुर से एक इंजीनियरिंग डिग्री ली, और उसके बाद आप किस तरह से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना स्थापना में और एक एकेडमिक लीडरशिप में आए, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि समावेश करके एक यूनिवर्सिटी को बनाए?
2: जी, इसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी है। मैं IIT खड़गपुर से 2008 में ग्रेजुएट हुआ। 5 साल मैंने वहाँ BTech और MTech इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया था और मुझे अपने उस 5 सालों में सिर्फ 4 महीने के आसपास मौका मिला इंटर्नशिप करने का, जो कि कॉलेज की

0: में गए तो हमें हर चीज शुरुआत से सिखाई गई जो उनको जरूरत था, और जो हमने पढ़ाई पढ़ी थी वहां पर रेलेवेंस कम था क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा था वो थोड़ा पीछे चल रहा था और इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो मुझे ये समझ में आया, और आपको मैं एक और उदाहरण दूंगा कि पूरे इंडिया में युवा क्या करते हैं कि क्योंकि ये डिग्री प्रधान देश, मैं इसको बोलूंगा कि भाई तब तक बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं बोलते जब तक वो डिग्री ना
1: ले ले। बिल्कुल।
0: और हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिग्री लें और एक सिक्योर जॉब, यानी कि ऐसी नौकरी लें जो कभी उनकी सिक्योर हो जाए, सरकारी जॉब हो या कोई बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो। लेकिन आज का युवा को ये चाहिए कि आज की पढ़ाई में जो वो समय और पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या उसको उसमें वापस मिलेगी, कितनी तेजी से वो करियर में आगे बढ़ सकते हैं, ये सवाल आज के युवा में रहते हैं। लेकिन इतने सालों में क्या हुआ, क्योंकि डिग्री भी करनी है तो बच्चे बीकॉम बीएससी कॉलेजेस में जा रहे हैं और उनको प्रोफेशनल कोर्स करना है क्योंकि नौकरी चाहिए, तो आपने एक पैटर्न देखा होगा कि लोग डिग्री भी करते हैं साथ में कोई ना कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जाते हैं, यानी कि कोई अकाउंटिंग टैली सीख रहा है, कोई डिजाइनिंग सीख रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग, या तो कोई कोचिंग कर रहा है कि भाई मैं कोई एंट्रेंस टेस्ट दूं क्योंकि उसको डिग्री भी चाहिए,
1: बड़ा इंडस्ट्री है,
0: कंपटीशन की तैयारी करता है, या उसको कोई वोकेशनल यानी कि कोई ऐसा स्किल सीखता है जिससे उसकी इमीडिएट नौकरी लग सके। आज अगर कोई स्किल सीख रहा है, कोई प्रोफेशनल काम सीख रहा है, वो हमारे हायर एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। यही नई शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य है कि कैसे लोगों को एम्पावर करें एक अच्छे स्किल डेवलपमेंट से, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौशल और उसके अंदर वो कैरेक्टर और एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को कैसे जोड़ा जाए। एक स्किल यूनिवर्सिटी होने के नाते जो कि एक बहुत इंडस्ट्री फोकस्ड होती है, हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम ऐसे ही प्रोग्राम्स लाएं जिसमें हम इंडस्ट्री के स्किल सर्टिफिकेशंस को साथ में जोड़ के पढ़ा सकें। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ पे सिक्किम में एलाइड हेल्थ केयर, यानी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं पूरे हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल सेगमेंट में, उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं एग्जाम क्लियर कर पाते वो एलाइड हेल्थ केयर में फिजियोथेरेपिस्ट या डायलिसिस टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएशन पढ़ाई पढ़ते हैं एज अ स्किल यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूरे इंडिया में बहुत जगह हो रही है, लेकिन हमारा अप्रोच ये रहा कि हम इंडिया की सबसे बड़ी जो डायलिसिस सर्विस देती है नेफ्रो प्लस, उनके साथ हम जुड़े, एमओयू किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे कैंपस के अंदर अपना एक डायलिसिस सेंटर खोलें जो लोकल लोगों को भी सर्विस दे और उसको हमारे बच्चे और हमारे फैकल्टी चलाएं और हमारे बच्चों को एक्सपीरियंस मिल सके कि डायलिसिस एक्चुअली एक हॉस्पिटल में या एक डायलिसिस सेंटर में कैसे होती है। तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यानी कि काम करते करते सीखना पे हमारा बहुत उद्देश्य है, और मुझे लगता है कि वो बच्चे को एक अलग कॉन्फिडेंस दिलाता है और उसको ये मोटिवेट करता है, उसको वो सारे चैलेंजेस सिखाता है। जैसे हमारे कोई भी स्किल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में इंडस्ट्री में जाके एम्प्लॉयर के यहाँ पर इंटर्नशिप करना, काम को सीखना इंटर्नशिप के थ्रू, अप्रेंटिसशिप के थ्रू, ऑन द जॉब लर्निंग के थ्रू, ये कंपलसरी, और 30-50% तक आपके पूरे प्रोग्राम में, यानी कि 3 साल में आपको 1-1.5 साल आपको इंडस्ट्री के अंदर रहना है। और ये हमने इसका फायदा देखा, मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमारे बच्चे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स में हमने टाई अप करके वहां पर उनको पहले साल में ही डाला कि आपने थ्योरी पढ़ी 1 साल, अब आप उसे 3rd साल आप होटल के अंदर रह के काम करिए, वहां पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आप उससे अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं, हमारी फैकल्टी वहां जाके उनकी सुबह सुबह क्लास भी लेती है, बाकी 5-6 घंटे वो काम भी करते हैं। तो जब वो निकले तो हर होटल वाले ने ये बोला कि इन बच्चों की क्वालिटी बाकी के जो हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर से जो बच्चे आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है क्योंकि उन्होंने काम करते करते चीजों को सीखा है। और दूसरा, जब बच्चों को ग्रेजुएशन में जल्दी काम करने का एक्सपोजर दिया जाता है तो उससे वो डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उनको जो जिम्मेदारी निभानी है उसका बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस आता है, और वो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी वो अपने आप को जिम्मेदार समझेगा और आगे मेहनत करेगा कि वो आगे बढ़ सके काम में।
1: आपका मूल मंत्र क्या है लोगों को, बच्चों को शिक्षित करने का, रोजगार परक बनने का, यूनिवर्सिटी का एक, या आपका अपनी तरफ से ऐसा कुछ मूल मंत्र आप लोगों को बताते हो या उस पे काम करते हो?
0: मुझे लगता है कि शिक्षा का जो स्रोत है, यानी कि यूनिवर्सिटी को पूरे इंडिया में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप चीजों को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो एज अ स्किल यूनिवर्सिटी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम करिकुलम्स को उसी हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं जैसा इंडस्ट्री को जरूरत है, और उसमें 4 चीजों पे फोकस करते हैं। एक है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो तकनीकी शिक्षा जो इंडस्ट्री को चाहिए उसको हम काम कराते कराते पढ़ाते हैं। दूसरा है कैरेक्टर, कि हम कैरेक्टर को कैसे डेवलप करें, उनको क्लब

0: जॉब्स में करना, उनको एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स बाहर के जगहों पे इंडस्ट्री में इमर्जन कराना, उनको ऐसे टफ सिचुएशन में डालना, लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट में लगाना, तो इन सभी से उनका चरित्र डेवलप होता है, जो कि आज बहुत ज्यादा जरूरी,
1: ताकि वो सामाजिक सरोकारों
0: से भी जुड़ा रहे। और नवाचार इनोवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये ना सोचेंगे कि आपके आसपास की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर हर प्रोग्राम का जो बैच होता है वो एक गांव से आसपास के जुड़ा हुआ है, जहां पर उनको प्रोग्राम के तहत उस गांव में आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपका वो सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, क्योंकि आज AI है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। पहले लाइब्रेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन आज पूरी की पूरी लाइब्रेरी आपके फोन में है, ग्रीन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो नॉलेज को यूज करते हुए अगर आप आसपास की प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं, तो वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में भी प्रमोट करता है, इनोवेशन सिखाता है, और रोजगार पे सारा फोकस कि भाई आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने से आप अपने काम को कैसे बेहतर कर पाएंगे रोजगार में, इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखना शिक्षा देते हुए, ये एक यूनिवर्सिटी का बहुत जरूरी फर्ज बनता है।
1: तो क्या ग्लोबल स्किल कैपिटल के रूप में भारत उभरने वाला है?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बिंदु आप लेके आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना और विजन है कि इंडिया को एक ग्लोबल स्किल्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। वो इसीलिए क्योंकि आज भारत हमारा सबसे यंग देश है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर सबसे ज्यादा युवा है, और 30 साल से कम उम्र के करीब करीब 50% से ज्यादा लोग हमारे यंग पॉपुलेशन है। और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हमारा इंटरनेशनल पाथवे का प्रोग्राम चलता है, जिसमें आज जर्मनी, जापान जैसी कंट्री जहां पर लोग बूढ़े हो रहे हैं, जहां पर एवरेज एज बहुत बढ़ गया है, क्योंकि वहां पर यंग लोग कम आ रहे हैं, तो पुराने लोगों को, बूढ़े लोगों को हेल्प करना, वहां पर चीजें बनाना, यानी कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, नर्स, जेरियाटिक केयर, यानी कि बूढ़े लोगों को जो सपोर्ट नर्सेज होती हैं, इन तरह के लोग कम पड़ गए हैं। तो आज भारत और जर्मनी जैसे देश का ऐसे MOUs है, जहां पर यहां से लोग वहां जा रहे हैं, उसमें हमने भी अपना रोल कर रहे हैं कि हम जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग कराते हैं और उनको बाहर भेजते हैं। इसी में मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, एक बच्चा हमारा केरला से, जो कि एक ऑटोमोटिव टेक्नीशियन की महीने की 20,000 रुपए की नौकरी करता था, उसको हमने साल भर में जर्मन लैंग्वेज सिखा के, उसका एग्जाम पास करवा के उसको जर्मनी भेजा, मर्सिडीज बेंज में उसकी नौकरी लगी, और वो 3 लाख रुपए मैंने इंडियन रूपी के हिसाब से कमा रहा है वहां पे। तो मुझे लगता है कि न कि सिर्फ उसकी जिंदगी, बट उसके पूरे परिवार की और आने वाले जनरेशन, पूरे पीढ़ी का एक अप्रोच बदल जाएगा, एक रूपरेखा बदल जाएगी, जो मुझे लगता है। और इंडिया में बहुत ज्यादा इस चीज का स्कोप है कि यहाँ के युवा बाहर के देशों में जाके अच्छा काम करें, क्योंकि वहां पर हाथ से काम करने वालों की कमी होते जा रही है, और हमारे यहाँ पे युवाओं की कमी नहीं है, जो पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं।
1: प्रवेश दुदानी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातों पे चर्चा की और अपने अनुभव साझा किए, खास करके जो किताबी ज्ञान से आगे एक नौकरी दिलाने वाली शिक्षा या प्राप्त करने वाली शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, उसके लिए किस तरह की निपुणता की जरूरत है, स्किल इंडिया मिशन के तहत किस तरह से आप अपने विश्वविद्यालय में सारी चीजों का समावेश कर रहे हैं ताकि विकसित भारत के स्वप्न में अपना रोल अदा कर सके, इसके साथ ही आपने AI के दौर में युवाओं के लिए किस तरह की चैलेंज को स्वीकार करना और अपनी निपुणता को डेवलप करने की जरूरत है, इन सब बातों पर चर्चा की, जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व विषय पर अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय MSU सिक्किम के संस्थापक और कुलाधिपति प्रवेश दुदानी से भेंट कर रहे थे दिलीप झा। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की अवधारणा और महत्व पर श्री प्रवेश दुदानी, संस्थापक और कुलाधिपति मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय सिक्किम से भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे दिलीप झा। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही आप हमसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े हुए हैं। सुबह के 9:30 होने को है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

0: across 10 of the 11 active missions.
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरु मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India's largest global textile event, Bharat Text 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the 4-day event. The event is showcasing India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment and international trade. It has brought together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, startups and technology providers. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F Vision, Farm to Fiber to Factory to Fashion to Foreign, Bharat Tex 2026 has evolved into a premier global platform for business, investment, innovation, policy dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. The third edition of BharatTex 2020.

London. हम लोगों ने बचपन से एक कहावत सुनी है, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरा अपनी बचपन को याद कीजिए। क्या सचमुच नाम में कुछ नहीं रखा होता? घर में दादा दादी की पुकारने का नाम, माँ की आवाज में घुला कोई प्यार भरा निकनेम, भाई बहनों की शरारतों से मिला कोई नया नाम, ये सिर्फ नाम नहीं होते, ये हमारी जिंदगी की सबसे मीठी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। नाम तो बस एक पहचान है, अपनापन तो उस पुकार में छिपा होता है जिसे सुनते ही बरसों पुराना बचपन चुपके से मुस्कुरा उठता है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका और हमारा मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन, और इसी के साथ आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। और आज आपके साथ इस सफर में हम सफर रहूंगी मैं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आज घर आंगन का सवाल आप सबसे ये है कि आपका बचपन का निकनेम क्या था, और आज भी क्या घर में कोई उसी नाम से आपको बुलाता है? अपने जवाब हमें जरूर भेजिए। हो सकता है आपका एक छोटा सा निकनेम या छोटा सा प्यार का बुलाने वाला नाम हमारे दूसरे श्रोताओं के चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। इंतजार है आपके प्यारे प्यारे नामों का।

0: द फिल्म थी द ग्रेट गैम्बलर, और इसमें आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ किशोर कुमार की आवाज में ये गाना। तो हमारा आज का सवाल आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ये है कि आपका बचपन का पुकारने वाला नाम क्या था, यानी आपका निकनेम क्या था, और अभी भी कोई आपको इस नाम से बुलाता है? तो देखिए, बुलाने से मुझे याद आया कि मैं यहाँ पर आवाज दे रही हूँ हमारी सहयोगी, हमारी साथी रश्मि जी को जी। और स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: एक नाम और जुड़ गया है निकनेम्स के साथ, और नाम की बात की है तो रश्मि कुकरेती आपके साथ मैं जुड़ गई हूँ, और सोनाली तो
0: बिल्कुल हमारा नमस्कार एक बार फिर हमारे दोस्तों को,
1: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सोनाली तुम्हें भी नमस्कार।
0: नमस्कार रश्मि जी। तो हम बात कर रहे थे नामों की, है ना, और जब हम बात करते हैं नाम की तो एक बचपन की बातें हो रही हैं, तो मुझे मशहूर शायर निदा फाजली की दो पंक्तियां याद आ गई हैं
1: जी।
0: बाट की अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहां गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ, है ना।
1: सुंदर ख्याल और क्या खूबसूरत बात। सचमुच सोनाली, माँ अचानक माँ तो नहीं बन पाती, सबसे पहले वो एक लड़की होती है।
0: हाँ,
1: भी तो अपने सपने होते हैं, अपनी सहेलियों, अपनी शरारतें और उसके मन की छोटी छोटी इच्छाएं।
0: बिल्कुल, और देखिए ना, जैसे जैसे जिंदगी बदलती है ना रश्मि जी, घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, और वही चंचल लड़की सबकी फिक्र करने वाली माँ बन जाती है, और ना सबकी पसंद याद रखती है लेकिन कई बार अपनी पसंद ही भूल जाती है, सबकी जरूरतों का ध्यान रखती है लेकिन अपने लिए समय निकालना टालती रहती है।
1: हाँ, तो जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कभी अपनी माँ से ये पूछा था कि उन्हें कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है, या वो कौन सी जगह पर फिर से जाना चाहती हैं, या ऐसा कोई शौक जिसे वो आज भी जीना चाहती हैं?
0: बिल्कुल, देखिए कभी पुराने एल्बम निकाल कर देखिए, उनमें आपको सिर्फ अपनी माँ नहीं मिलेगी, एक हंसती खिलखिलाती सपने देखने वाली लड़की भी निकलेगी, है ना
2: जी। और सोनाली मैं सच बताऊं, हर लड़की के चेहरे में उसकी माँ का चेहरा तो वैसे ही छुपा हुआ होता है ना, शायद उस लड़की से फिर हमें मिलवाना भी हमारे हिस्से की एक छोटी सी जिम्मेदारी बनती है।

0: फिल्म नरम गरम में आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में बहुत प्यारा सा गीत
1: जी। और सोनाली, वाकई जो गीत के बोल भी थे ना, वो बहुत दिल को छू लेने वाले गीत थे। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे में माँ का चेहरा छुपा है ना, ऐसे एक लड़की जीती है ना।
0: मतलब माँ को सच में अगर कोई मिस करता है, अगर कमी महसूस होती है, तो जिस तरह से इस गाने में बयां किया ना रश्मि जी,
1: हाँ,
0: माँ की साड़ी पहन लेना या माँ के जैसे ही तैयार होना, वो हर लड़की कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज से जोड़ सकती है।
1: तो मुझे लगता है ये गीत जो भी सुन रहे हैं हमारे सुनने वाले, उनको कहीं ना कहीं अपनी माँ की जरूर याद आ गई
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: बिल्कुल हाँ। आ रही होगी।
1: और तुमने वापस आते हैं निक नेम पूछा था सबसे और बड़े प्यारे प्यारे निक नेम्स आ गए हैं। हाँ। प्रदीप दुबे जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत थोड़ा सा शर्म आती है, लेकिन उनका निक नेम था लालू।
0: देखिए, और ना एक चीज और भी है यहाँ पे ना, नवीन भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि दादी जी और माता जी उन्हें राजू कहकर बुलाती थी।
1: हम सब श्रोताओं को बचपन में लिए जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: और निकनेम कुछ समय तक साथ चलता है और कभी वो फेड भी हो जाता है, लेकिन याद तो रहती है ना।
0: और रश्मि जी, आपने महसूस किया कभी अक्सर ना हमारे जो बचपन के दोस्त होते हैं
1: जी,
0: वो हमें उसी नाम से बुलाते हैं। और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे तो बहुत बार ना मेरे कजिन्स का असली नाम पता ही नहीं होता है।
1: अच्छा, भूल जाती हो।
0: वो निकनेम ही याद रहते हैं उनकी।
1: जी, डॉक्टर डी राजेश्वर राव कह रहे हैं कि मैं अपनी बिटिया को परी बुलाता हूँ, हालांकि उसका नाम है सुगंधावा। पापा की परी है वो।
0: बिल्कुल है। और देखिए, चरणदास जी लिख रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं चौधरीवास हिसार से, लिख रहे हैं राजू अग्रवाल केशव प्रियांशी की बच्चों के प्यार करते वक्त हम तोतली भाषा में बात करते हैं और इसी भाषा में नए नाम अपने आप निकल आते हैं, सभी उसी नाम से पुकारते हैं। मेरा पूरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। अच्छा, वो एक चुटकुला भी लिख रहे हैं जी। रेलगाड़ी में पास बैठे यात्री से पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कालका प्रसाद वासी। जब उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने कहा आज का प्रसाद ताज, आज का प्रसाद दीजिए, मतलब इस तरह का कुछ।
1: अच्छा।
0: तो कुछ इस तरह का था
1: जी।
0: जी,
1: और एक और मेल मेरे पास आया है विवेक विहार से। आप कह रहे हैं कि मेरा घर का नाम था गब्बर, क्योंकि बचपन में मैं सबको डराता नहीं, हंसाता था।
0: अच्छा।
1: तो बहुत प्यारा नाम है गब्बर।
0: अच्छा,
1: जबर नेम है गब्बर।
0: क्या बात है, सच में जबर नाम है। अच्छा देखिए, हमारे संग कामायनी जुड़ी है लक्ष्मीनगर से
1: जी,
0: और वो कह रही है कि आज का जो सवाल है वो बहुत अच्छा है और मेरे तो बहुत सारे निकनेम हैं। घर में सब प्यार से बिट्टू बुलाते थे, मेरी फ्रेंड्स कली बोलती थी और कुछ फ्रेंड्स कामायनी बुलाते थे, क्योंकि मुझे कविताएं पसंद हैं और जयशंकर प्रसाद जी मुझे बहुत प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने अपना नाम। अच्छा, क्या
1: अच्छा,
0: बात है,
1: वाह क्या बात है,
0: कामायनी इसीलिए नाम है।
1: हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ छिला के शीतल छा,
0: क्या
1: वाह, कितनी खूबसूरत कविताओं की पंक्तियां याद आ गई।
0: हाँ।
1: प्रसाद जी की, तो आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो हम ना हर माँ के भीतर एक लड़की की बात हमने की है ना, और कई बार वही लड़की ना जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां भी लड़ रही होती है रश्मि जी।
1: जी,
0: और ऐसी ही एक महिला है जिनकी कहानी ना आज हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। इन्होंने अपने दुख को सिर्फ अपना दुख बनाकर नहीं रखा, बल्कि उसे हजारों लोगों की उम्मीद में बदल दिया।
1: जी, आप मुझे लगता है बात कर रही हैं पश्चिम बंगाल की सुभाषिनी मिस्त्री की कहानी बताना जा रही है, और वो उनकी कहानी जो है वो कुछ ऐसा संदेश देती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ा साधन नहीं बल्कि बड़ा हौसला।

0: फिल्म सफर में आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में ये गीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम घर आंगन में। और आज आपके साथ हम हैं, यानी मैं हूँ सोनाली और मेरे साथ है
2: रश्मि कुकरेती। और सोनाली, बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ गए हैं। उमेश कुमार खयाला से कह रहे हैं मेरा नाम बचपन का था गुप्ता, और जितेंद्र चौरसिया कह रहे हैं कि मेरा नाम था पप्पू और सरदार भी मुझे कहते थे। और मास्टर अशोक कुमार भी देखो फरमाइशी गीत लिख रहे हैं। अशोक जी से मैं कहूंगी कि आप अपना नाम बताएं, बचपन का क्या नाम था। और एक और सुशील जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और सचिन पठानिया और चंदा पठानिया नादौन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, और फिर वही फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं। तो हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे, दोस्तों ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, घर आंगन है। और हमारा सवाल था कि आपका बचपन का नाम यानी निक नेम क्या था, वो जल्दी से लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर।
0: बिल्कुल। और देखिए ना, मेरे साथ भी एक यहाँ पर एक मैसेज है, वो है रेखा देवी चौधरी वास हिसार हरियाणा से जी। लिख रही है मेरे बेटे का नाम विवेक है और बेटी का नाम प्रियांशी है। मेरे ससुर ने बेटे का नाम गोलू और बेटी का नाम चिक्की रखा है, और हम लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं।
2: सुंदर नाम है।
0: बिल्कुल। और फिर सुदर्शन मुखी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ है सिमरन मुखी और अनिता मुखी। वो लिख रहे हैं हमारी बिटिया का निकनेम है सीमू जी। वैसे हमारी बिटिया का नाम है सिमरन मुखी जी, वो तो हमें पता ही है। और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए
2: जी। और सोनाली, मैंने देखा है जो बंगाल में तो निकनेम बहुत बोला जाता है और ज्यादातर, और बहुत सुंदर सुंदर नाम होते हैं, पर ज्यादातर जो है ये जो घर में प्यार के दुलार के नाम होते हैं उनसे पुकारा जाता
0: जी,
2: है।
0: और शायद तभी मैंने आपसे कहा था कि मुझे बहुत बार अपने कजिन्स का असली नाम नहीं पता होता।
2: आपका निकनेम क्या था ये बताओ।
0: मेरा निकनेम बताऊंगी, उसके पहले मैं आपका निकनेम भी जानना चाहूंगी। देखिए, अब हमारे साथ जो कामायनी है ना, वो क्या लिख रही है, हाँ उनकी मम्मी उन्हें बहुत अजीब नाम से बुलाती है, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है। वो लल्ला तो कभी लाली भी बोलती हैं और पापा जी ध्रुव बोलते हैं। वाह वाह, नानी मुझे कृष्णा हाँ। बुलाती है
2: जी। मैं अपना निकनेम बता दूं सोनाली तुम्हें? हाँ, हाँ। मुझे मेरे पापा प्यार से झांसी की रानी करते थे।
0: क्या बात है, देखिए पिताजी ने आपका नाम बिल्कुल झांसी की रानी, क्या बात है। देखिए,
2: और क्योंकि मैं बचपन में से ना बचपन में सुनती सुनती नहीं थी किसी की, बस अपने मन की करती थी, तो वो बस ऐसे ही कहते थे कि झांसी की रानी है, ये किसी की नहीं सुनने वाली, अपने मन की करेगी।
0: क्या बात है, देखिए इसके पीछे भी
2: अपना नाम भी बता दो। देखो मैंने तुम्हें बताया तो कुछ तुम्हें भी बताना पड़ेगा।
0: मेरा घर का नाम, वैसे तो सब मुझे सोना ही बोलते हैं
2: जी, मुझे सोनाली रखने ऐसे ही गोल्डन नाम होगा
0: नहीं
2: तुम्हारा।
0: सोनाली रखने के पीछे भी यही था कि नानी मुझे सोना सोना बुलाती थी मेरा नाम नहीं रखने के पहले
2: जी,
0: तब मैं उनको शायद जवाब देती थी, ऐसे मेरी माँ कहती है, तो वो मुझे सोना बोलती थी, तो मैं बोलती थी तो उन्होंने मेरा नाम ही सोनाली रख।
2: तो आज बहुत सारे सीक्रेट्स आउट हो गए सोनाली, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और रोचक जानकारी हम लेकर आए हैं अपने सुनने वालों के लिए।
0: बिल्कुल, देखिए हम ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक चीज को हर दिन लिखते हैं मतलब, और उसके बारे में बहुत कम जानते हैं, ऐसा होता है ना
2: जी,
0: है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पिन कोड क्या है, तो आप मुझे बिल्कुल एकदम बता देंगे,
2: सटीक बता देंगे जी।
0: और लेकिन अगर ये पूछूं कि उन 6 अंकों का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आप रुक जाओगे, है ना। तो पिन का मतलब क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर
2: जी।
0: और इसकी शुरुआत ना 15 अगस्त 1972 को भारतीय डाक विभाग ने की थी। उस समय देश में कई शहरों और कस्बों के नाम एक जैसे थे, तो शायद उसी को अलग अलग पहचान देने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी।
2: और इस व्यवस्था को भारतीय डाक सेवा के अधिकारी श्रीराम भिखाजी वेलणकर ने विकसित किया था। उनका उद्देश्य ये था कि देश के किसी भी कोने से भेजी गई जो चिट्ठी है वो बिना किसी भ्रम के बिल्कुल सही पते तक पहुंच जाए।
0: हाँ, और ना देखिए अब इसके पीछे जो है ना कि पहला अंक जो होता है इसका वो भारत के किस डाक क्षेत्र से है वो बताता है,
2: और दूसरा अंक जो है वो क्षेत्र के उपक्षेत्र की पहचान कराता है,
0: और इसी के साथ ना जो तीसरा है ना वो जो छटाई का केंद्र होता है ना यानी सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो उसका नंबर होता है,
2: और आखिरी जो तीन अंक होते हैं उस विशिष्ट डाकघर की पहचान होते हैं जहां से आपकी डाक आगे आपके अपने घर तक पहुंच जाती है।
0: क्या बात है ना। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि भले ही इंटरनेट और मोबाइल के हम दौर में रह रहे हो लेकिन पिन कोड की जो अहमियत है ना वो जरा भी कम नहीं हुई है ना, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, कोई भी सरकारी दस्तावेज की बात हो, पार्सल हो, डिलीवरी हो, सभी पिन कोड के वजह से एकदम सही तरीके से आप तक पहुंच जाते हैं।
2: जी, है ना? तो कभी किसी लिफाफे या पार्सल पर अपना पिन कोड लिखते समय एक बार जरूर सोचेगा कि इन 6 अंकों के पीछे भारतीय डाक विभाग की दशकों पुरानी एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है जो हर दिन करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।

0: रामपुर का लक्ष्मण। इस फिल्म में आप सुन रही थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।
1: हाय राम और हाय राम। सुशील पठानिया जी दोबारा जुड़ गए, कह रहे मुझे मालूम नहीं था कि क्या आपका सवाल था, और अब बता रहे हैं कि मेरा जो निक नेम है वो टिंगू है, जो मेरे नाना जी ने रखा था पता नहीं क्यों, हालांकि मुझसे बड़े इसी नाम से पुकारते हैं। हालांकि मेरे बच्चे अभी जॉब में हैं, लेकिन कई बार मेरी लाइफ यानी मेरी वाइफ ऐसे ही पुकार लेती है, घर ध्यान कहीं और हो। भाई ये तो बड़ा प्यारा सा,
0: कितना प्यारा है ना ये चीज।
1: और एक और संदेश आया है हमारे पास, आप हैं राजीव विवेक विहार से, आप कह रहे हैं कि मुझे ऑफिस में सब प्रोफेसर कहते हैं क्योंकि मुझे ज्ञान देने की बहुत आदत है।
0: देखिए और कितने प्यार से उसको मान भी रहे हैं कि मुझे ज्ञान देने की आदत है। और इसी तरह से हमारे संग ना योग्रसेन यादव जी जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं हमें नमस्कार लिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं उनका नाम यही है, मतलब उग्रसेन ही नाम है उनका, और लेकिन वो एक तारीफ भी कर रहे हैं कि प्रोग्राम और एक क्वेश्चन उन्हें बड़ा दिलचस्प लगा है।
1: जी तो भाई जो घर आंगन की जो प्रस्तुत करता है वो रोज रोज आपके लिए बड़े मजेदार से सवाल लेकर आती हैं, कहीं ज्ञान मिलता है, कहीं जानकारी मिलती है, और कहीं बस यूं ही बातें होती है। और जब बातों की बात होती है सोनाली, तो भाई आजकल लोगों को मोबाइल पर बातें करने की बहुत आदत है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो फिर भाई मोबाइल के बारे में अगर कुछ नया फीचर तुम बताने जा रही हो तो मैं इंतजार कर रही हूँ।
0: बिल्कुल रश्मि जी, ऐसा होता है ना कि हम मोबाइल का इस्तेमाल बातचीत से लेकर बैंकिंग और खरीदारी तक लगभग हर काम के लिए करते हैं, है ना। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग मोबाइल खरीदते समय उसके कैमरे, स्टोरेज और बैटरी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर भी होते हैं जिनकी अहमियत मुश्किल समय में समझ आती है।
1: एक ऐसा ही फीचर है इमरजेंसी SOS का। भाई आजकल जो अधिकांश स्मार्टफोन होते हैं ना, उनमें ये सुविधा पहले से ही मौजूद है, और भाई किसी दुर्घटना, अस्वस्थता या आपात स्थिति में ये फीचर आपके द्वारा पहले से चुने गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आपकी लोकेशन और मदद का संदेश भेजने में सहायता कर सकता है। तो जो अलग अलग मोबाइल कंपनियां होती हैं उसमें इसे शुरू करने का जो तरीका है वो भी अलग होता है, लेकिन आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में ये सुविधा मौजूद है।
0: हाँ, और इसी की तरह ना इसी तरह से मेडिकल ID फीचर भी होता है। हाँ, इसमें हम अपना नाम, अपना रक्त समूह, अपनी एलर्जी और जो भी हम नियमित दवाइयां ले रहे हैं ना उसकी जानकारी और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट साथ में दर्ज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यह जानकारी बिना फोन अनलॉक किए भी देखी जा सकती है, जिससे मदद करने वालों को आवश्यक जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है।
1: तो हम तो यही कहेंगे भाई अभी सुनने वालों को कि अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल में ये दोनों सुविधाएं सेट नहीं की हैं तो आज ही कुछ मिनट निकालिए और इन्हें जरूर देखिए, हो सकता है जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन तैयारी तो हमेशा काम आती है, तो मैं तो ये कसम अब ले रही हूँ।
0: बिल्कुल, सभी को ये कसम लेनी चाहिए।

0: तो ये गाना था फिल्म तेरे मेरे सपने का, और लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज में ये गाना था
1: जी। और देखिए, जब कसम की बातें होती हैं तो हम तो ये कहेंगे आप कसम लें या ना लें, लेकिन अपनी जो छोटी छोटी आदतें हैं और छोटे छोटे फैसले हैं ना, ये ज़रूर लेते रहें और सही फैसले लें और सही आदतें लें, है ना।
0: अब जब आपने छोटी छोटी आदतें और फैसलों की बात की है ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत अलग सी जानकारी आई है
1: जी।
0: और ये बात जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये खेती पर भी लागू कर सकते हैं वैसे, है ना
1: जी। बिल्कुल,
0: क्योंकि खेती प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर की जाए तो उसका लाभ सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। तो हमारे भारत का एक ऐसा राज्य भी है जहां पूरी खेती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना की जाती है
1: जी। बिल्कुल, और ये राज्य है सिक्किम। वर्ष 2016 से सिक्किम को भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया, और ये उपलब्धि सोनाली एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे कई वर्षों की योजना, किसानों का सहयोग और प्रकृति के पीछे गहरी प्रतिबद्धता भी थी।
0: क्या बात है। और देखिए, ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती
1: जी,
0: ये एक ऐसी खेती है जिसमें हमने जहां आपको बताया केमिकल और कीटनाशक यहां पर इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि प्राकृतिक तरीकों से यहां पर खेती की जाती है। तो सिक्किम ने यह साबित किया कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। आज वहां की जैविक खेती ने स्थानीय किसानों को नई पहचान दी है और देश विदेश में आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित किया है।
1: सोनाली, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, शायद इसीलिए उसकी देखभाल करना भी हमारी साझा जिम्मेदारी बनती है।
0: धरती हमें विरासत में नहीं मिली, इसे हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है ना।

0: फिल्म हरियाली और रास्ता। इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और दोस्तों आपको बता दें, हमारा आज का सवाल है कि आपका बचपन का निकनेम क्या था और आज भी क्या आपको घर पे कोई उसी नाम से बुलाता है।
1: और हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो जल्दी से लिख भेजिए कि आपका प्यार से बुलाने वाला नाम क्या था। और एक प्यार से बुलाने वाला नाम मेरे पास आ गया है। आप हैं विवेक, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है घर में सारे मिस्टर हसमुख कहते हैं क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ बस हंसाता ही हूँ। भाई बहुत प्यारा नाम है और आपके अंदर ये जो गुणवत्ता है ये बहुत प्यारा गुण है। किसी को हंसाना वाकई बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात है, और ये गुण और ये बात हर एक के अंदर होती नहीं है।
1: हाँ,
0: है ना?
1: और सुर भी कह रही है कि मुझे कहते हैं मिस लेट लतीफ क्योंकि मैं कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाती। आप मयूर विहार से हैं। भाई सुर भी ये तो नहीं होना चाहिए, समय से निकलना चाहिए। देखिए हमारे आकाशवाणी में तो ये बिल्कुल स्वभाव है, जितने समय पर कार्यक्रम शुरू होता है उससे पहले पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है और उसी का प्रबंधन करके हम समय से यहाँ पहुंचते हैं।
0: बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, बिल्कुल वक्त नहीं है। तो मुझे लगता है वो व्यस्त नहीं रहते, वो अस्त व्यस्त रहते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं मौसम, तो खैर इन दिनों अगर मौसम की बात करते हैं चलते चलते
1: थोड़ा अस्त व्यस्त हम भी हो गए हैं बिना बारिश के।
0: तो ये अस्त व्यस्तता हमारे जीवन में शुमार हो चुकी है फिलहाल। लेकिन ना आपको पता है कि भारत में, हमारे देश में यानी, बारिश का इंतजार सिर्फ किसानों को नहीं होता है ना, क्योंकि ये मौसम एक ऐसा है जो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आता है, जैसे खूब प्यार भरे गाने लेकर आता है और संगीत प्रेमियों को तो खैर मजा ही आ जाता है। तो ये सिर्फ बादलों से गिरने वाली बूंदें नहीं होती बल्कि जीवन में नई उम्मीद लेकर आने वाला मौसम होती है, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल, क्योंकि बरसात शुरू होते ही देश के अलग अलग हिस्सों में तीज, हरियाली, अमावस्या, कजरी तीज जैसे पर्व मनाए जाते हैं। भाई कहीं पेड़ों पर झूले पड़ रहे हैं तो कहीं लोकगीत गूंज रहे हैं तो कहीं मिट्टी की सौंधी खुशबू लोगों के मन को तरोताजा कर देती है।
0: और शायद यही वजह है कि पहली बारिश की बूंद गिरते ही हमारे मन में भी कुछ बदलने लगता है, है ना
1: जी?
0: और बस तो बारिश सिर्फ धरती को ही नहीं भिगोती, कई बार यह मन की धूल भी धो जाती है।
1: और सोनाली, भारतीय संगीत में और भारतीय साहित्य में बारिश का तो अपना अलग ही स्थान है। संस्कृत के जो महाकवि कालिदास के मेघदूत से लेकर लोकगीतों और हिंदी फिल्मों तक बरसात को प्रेम, विरह, मिलन और नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में देखा गया है। क्योंकि सोनाली जब बारिश का मौसम आता है, भाई हम इस समय तो दिल्ली में थोड़ा सा चाह रहे हैं बारिश हो जाती, इस गर्मी से छुटकारा मिल जाता, बल्कि हम कहेंगे पूरे देश में, हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व में संतुलित बारिश हो, सब जगह पानी पहुंचे और खुशहाली और अन्न धन का भंडार भरा रहे, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। और हम तो ये कहेंगे जब बारिश चलती है तो हवाएं ही बदल जाती है। कैसी हवाएं हो जाती है सोनाली?
0: वो हो जाती है ऐसी

0: अभी आप सुन रहे हैं ये फिल्म है अनोखा दान और इसमें आप सुन रहे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। रश्मि जी घड़ी इजाज़त नहीं देती कि बातों को और आगे बढ़ाएं, लेकिन चलते चलते आपको बता दें हमारे साथ इदरीस सैफी जी जुड़े हैं और सब उन्हें सैफी नाम से बुलाते हैं।
1: हाँ, और इसी के साथ लेते हैं इजाज़त रश्मि कुकरेती को
0: और सोनाली को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: उन्होंने दुनिया कहा के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी है। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021. Through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling trade to $100 billion by 2030. India's largest global textile event, Bharat Text 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh today inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said Bharat Text is the vision of the Prime Minister Narendra Modi. He said it is now an international event, and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. He said this year over 60,000 buyers and exhibitors from 130 countries are participating in the event. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Text. He said free trade agreements with different countries are also benefiting the textile sector.
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं।
3: Buyers from around 130 countries are participating in the event. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India now has free trade agreements with 56 countries. We are competing in global markets with a large number of exhibitors taking part. We are delighted that nearly 90% of the participants are MSMEs. We hope this year's expo will witness a record-breaking turnout of buyers.
1: इस बार जो बायर आ रहे हैं, ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
2: India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, "The world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever."
4: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: India participated in the second ministerial meeting of the Palestine donor group in Brussels yesterday. Addressing the meeting, Secretary in the Ministry of External Affairs, Siripriya Ranganathan, emphasized that India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. Ms. Ranganathan noted that India's projects are demand-driven and largely centered on healthcare, education, capacity-building and vocational training. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. military's Central Command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, Jask and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites, and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage. Iran responded with attacks targeting Bahrain, Jordan, and two tankers associated with the United Arab Emirates traveling through the strait, killing one mariner and injuring eight others. In men's cricket, the Indian team will take on hosts England in the first one-day international of a three-match series in Birmingham at 3:30 p.m. today. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US, tonight. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. Domestic equity benchmark indices traded lower today, tracking weak global markets after a sharp rebound in crude oil prices to $85 per barrel mark amid escalating tensions in West Asia. And with that, we end this news bulletin.
5: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम नाम है जिसका एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं संदेश।
6: पुलिस?
7: मिस सीमा
6: जी,
7: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
6: क्यों? लेकिन मैं
7: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
6: डिजिटल अरेस्ट?
7: 1 लाख दो, बच जाओगे।
6: इतने पैसे?
7: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
6: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
8: हेलो मम्मा।
9: RBI कहता है,
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम एक ही फिल्म से, जहां आपको सुनहरे दौर की उन फिल्मों से हम रूबरू कराते हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। आज की महफिल सजी है एक ऐसी कालजयी फिल्म के नाम जिसकी कहानी, संगीत, अदाकारी और नजाकत आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1960 में प्रदर्शित एक खूबसूरत सी फिल्म की। ये फिल्म गुरुदत्त फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। निर्माता थे गुरुदत्त, निर्देशन किया था एम सादिक ने और कहानी और पटकथा समीर उस्मानी ने लिखी थी। संगीत दिया था रवि ने और गीतों को अपनी शायरी से सजाया था शकील बदायूनी ने। तो इसके बाद तो आपको अंदाजा हो ही रहा होगा कि आज हम 1960 की कौन सी फिल्म आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं। इस गीत को सुनने के बाद तो आपका अंदाजा 100% पक्का हो जाएगा और फिर आप हमारे साथ अपने जवाब के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारे तक जवाब पहुंचाने का जो तरीका है वो मेल है। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और आपको बता दूं, आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का स्वागत करती हूं।
11: पर्दा नशीं शर्मा।

जी हाँ, आज हम आपको लेके चलेंगे 1960 के उस दौर में, जब पर्दे पर एक ऐसी फिल्म आई जिसने ना केवल लोगों का दिल जीता बल्कि गुरुदत्त साहब की किस्मत भी बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्म चौधरी का चांद। इस फिल्म में ऐसा जादू था कि वो जादू आज भी बरकरार है। 1959 में गुरुदत्त ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म कागज़ के फूल बनाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। गुरुदत्त साहब इस कदर टूट गए थे कि वो भारी कर्ज में डूब गए। उनका प्रोडक्शन हाउस भी बंद होने की कगार पर आ गया। तब उनके गहरे दोस्त और लेखक अबरार अलवी ने उन्हें सलाह दी कि गंभीर सिनेमा से हटकर एक ऐसी कमर्शियल फिल्म बनाई जाए जो आम जनता को पसंद आए। अबरार अलवी ने लखनऊ के बैकड्रॉप में एक मुस्लिम शोषण ड्रामे की कहानी लिखी। गुरुदत्त ने जोखिम उठाया और फिल्म बनने का रास्ता साफ हो गया। कागज़ के फूल की नाकामी से गुरुदत्त इतने हताश थे कि उन्होंने तय कर लिया था कि जब वो अपनी अगली फिल्म बनाएंगे तो उसका निर्देशन यानी कि डायरेक्शन खुद नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने चौधरी के चांद के निर्देशन की कमान अपने दोस्त अबरार अलवी को सौंप दी। ये अबरार अलवी की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म के कुछ गाने और मुख्य दृश्यों में गुरुदत्त की अनूठी निर्देशन शैली है, जो एक टच था उनका, वो साफ दिखाई देता है। तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म की जान यानी सबसे खूबसूरत सा गीत, और आपको बताएंगे कि वो गीत भी किस तरीके से बना था।

चौदहवीं का चांद हो आज भी प्यार का सबसे बड़ा तराना माना जाता है। संगीतकार रवि ने जब इस गाने की धुन बनाई तो शकील बदायूनी ने के लिखे शब्दों को अमर करने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को चुना गया। शकील साहब ने वहीदा रहमान की खूबसूरती को बयां करने के लिए ऐसे शब्द लिखे जो इतिहास बन गए। सिनेमेटोग्राफर बीके मूर्ति ने इस गाने को जिस तरीके से शूट किया वो कमाल था। और असल में ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन इस टाइटल ट्रैक को टेक्निकलर यानी कि रंगीन में शूट किया गया था। और जब सिनेमा घरों में अचानक स्क्रीन पर ब्लैक एंड वाइट से रंगीन हुई और वहीदा रहमान की लाल जोड़े में खूबसूरत सी जो छवि थी वो नजर आई तो दर्शक दीवाने हो गए थे।

फिल्म चौधरी का चांद। इस फिल्म की कहानी दो दोस्तों गुरुदत्त और रहमान की इर्द गिर्द घूमती है, जो अनजाने में एक ही लड़की वहीदा रहमान से प्यार कर बैठे हैं। फिल्म में रहमान ने नवाब का किरदार निभाया है। पर्दे पर दोनों दोस्तों के बीच का त्याग और गलतफहमियों को इतनी शिद्दत से दिखाया गया कि थिएटर में बैठे लोग रो पड़े थे। जॉनी वॉकर की कॉमेडी ने फिल्म में हल्के फुल्के पल जोड़े, जिससे फिल्म का संतुलन बेहतरीन बन गया था। चौधरी का चांद रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई है फिल्म, और इस फिल्म ने इतनी कमाई की कि गुरुदत्त साहब का सारा कर्ज उतर गया और उनका प्रोडक्शन हाउस फिर से फलने फूलने लगा। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी बहुत पसंद किया गया। चौधरी का चांद सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि ये गुरुदत्त की कला, अबरार अलवी की दोस्ती और मोहम्मद रफी साहब की आवाज का वो गुलदस्ता थी जिसकी खुशबू आज 60 से भी ज्यादा सालों बाद वैसी ही बनी हुई है। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

इस फिल्म में एस डी बर्मन के स्थान पर फिल्म की जो संगीत देने की जिम्मेदारी थी वो रवि को दी गई और उन्होंने ऐसा संगीत रचा कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और 1960 की सबसे सफल फिल्मों में ये शामिल हुई। चौधरी का चांद केवल एक प्रेम कहानी नहीं है बल्कि लखनऊ की नफाजत, उर्दू अदब, दोस्ती की मिसाल और मधुर संगीत का ऐसा संगम है जो समय के साथ और भी अनमोल हो जाता है। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंचे हैं, अब उन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्या देवानगन और हेमलता डिम्पल देवानगन जी हैं, लिख रहे हैं कि आज हम फिल्म चौधरी का चांद फिल्म के बारे में जानकारी मिल रही है हमको और हमें अच्छी लग रही है, शुक्रिया आपका। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत संचित प्रथमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया और शेख रहीम मुन्ना जी भी हमारे साथ हैं। सोनसिंह गिल, दलजीत राजदीप, गुरनूल गुरलाल, लोहगढ़ ठाकुरवाला गांव से हमारे साथ हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश कुमार देवानगन, दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। अजीत भावसर जी वीरन गांव गुजरात से, प्रमिला भावसर सनी जी के साथ जुड़े हुए हैं और ढेर सारी जानकारी हमेशा की तरह उन्होंने हमसे साझा की है। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, सार्थक आदर्श हमारे साथ हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी यूसरा जान जी हमारे साथ हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं आप, शुक्रिया। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल जी जुड़े हुए हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम जी हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है वो आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, वेद प्रकाश, सुबेदार अमर सिंह जी का आया हुआ है। और ये संदेश हमारे पास सुनील पाठक कमला जी ने अनारकली बाजार जगराव पंजाब से भेजा है। जीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से जुड़ चुके हैं।

कला दुर्ग से हमारे साथ संजय कुमार साहू, सुजीता सुजाता जी जुड़े हुए हैं, सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़े हुए हैं, सुरेश राठौड़ मंजुला गांधीनगर गुजरात से जुड़े हुए हैं, और भी संदेश हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत जो आप सभी का इंतजार कर रहा है।

जालंधर से ज्योति मन्नत और भरत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से, बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंचू टॉमस, पिंकी लवली जी हमारे साथ हैं।

हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरन गांव गुजरात से अजीत भापसर जी। लिखते हैं कि आज की एक ही फिल्म में चौधरी का चांद की जानकारी और गीत पसंद आ रहे हैं। लखनऊ की सरजमी पर ये बनी फिल्म है, लखनऊ की शान और शौकत नज़ाकत इस फिल्म में दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये संदेश हमारे पास बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत ने नागर कोला जिला राजन गांव छत्तीसगढ़ से भेजा है। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवानगंज चंपा जी हमें सुन रहे हैं। और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से राम शरण विश्वकर्मा साहिल जी जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा परिहार जी हमारे साथ हैं। मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत परवीन, सनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान परिवार के सभी सदस्य ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से हमारे साथ हैं। देवशंकर तामुरिया, अजय देव जी कभी रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं। ऊपरकोट बुलंदशहर से एम एस अब्बासी जी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। बटिंग रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू जी जुड़े हुए हैं। से भागवत वर्मा, शांति देवी हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, पार जी जुड़े हुए हैं। और ये संदेश हमारे पास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी का आया है। बबलेश पवार जी गांधी चौक बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी बेहतरीन जानकारी हमसे साझा की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रिकेस्टो रोजी जी हमारे साथ हैं और आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया और हमसे भी वो जानकारियाँ शेयर करी जो इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। कुछ और संदेश भी हम तक पहुँचे हैं। नेहरू चौक पैठन सूरज जाधव अनीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालगुरी गोस्वामी, हेमलता हिना, रघुनाथपुरा, श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएच नवानकर, निर्वला विशाल जी हमें सुन रहे हैं। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदक जी हमारे साथ हैं। फारूक अली खान जी हमें सुन रहे हैं और बबलिश पवार जी ने एक और हमें बेहतरीन जानकारी हमसे साझा की है लेकिन वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी जी हमें सुन रहे हैं। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्यन कुमार, आर्दर्श और आलोलिक जी हमें सुन रहे हैं। और आप सभी का हम एक बार और दिल से आभार करते हैं और सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

तो ये थी दोस्तों 1960 की वो खूबसूरत सी फिल्म जिसका नाम है चौदहवीं का चांद। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म से जुड़ी जानकारी और गीत ज़रूर पसंद आए होंगे, और हमेशा की तरह हम यही कहेंगे कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो वक्त निकालिए और देख लीजिए इस खूबसूरत सी फिल्म को। फिलहाल अब वक्त मुझे कह रहा है कि आपसे अनुमति लेनी है, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है। 2:30 पर प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर आएंगी प्रीति त्यागी, और 3 आपकी और मेरी मुलाकात होगी। जानते हैं ना प्रोग्राम का नाम क्या है? अब आप समझ गए हैं, मैटिनी मेलोडीज। तो हम फिर मिलेंगे 3, तब तक इस खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत ने आबनाए उर्मुज में हालिया हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा रुकनियत के लिए फ़िलिस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के दो रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क़यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले ओडीआई में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने आबनाए उर्मुज में मुत्तहिदा अरब अमारात के परचम बरदार दो तेल टैंकरों पर एक ईरानी मिसाइल हमले के बाद आज ईरानी मिशन के नायब सरबराह मोहम्मद जावेद हुसैनी को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और कई अफराद जख्मी हुए हैं। जनाब हुसैनी को अफसरान से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में वजारत खारजा के सदर दफ्तर से रुख्सत होते हुए देखा गया। यह सिफारती कदम मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा की तरफ से इस दावे की तस्दीक किए जाने के बाद उठाया गया था कि टैंकरों मुंबासा और बाहिया पर किए गए हमलों में एक भारतीय शहरी के हलाक और हमले के 8 अरकान के जख्मी होने का दावा किया गया है। इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी बाशिंदे शामिल हैं। 4 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीन की मेंबरशिप और 2 रियासती हल की हिमायत की है। कल ब्रुसेल्स में फ़िलिस्तीन अतियाकारों के ग्रुप की दूसरी वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा में सेक्रेटरी श्री प्रिया रंगनाथन ने ये बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत फ़िलिस्तीनी अवाम का तवील अरसे से शराकतदार रहा है।

0: उन्होंने फिलिस्तीन के अवाम की इंसानी इमदाद और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों समेत भारत की तरक्याती इमदाद को उजागर किया। मोहतरमा रंगनाथन ने कहा कि भारत के प्रोजेक्ट मांग पर मबनी हैं और सेहत, तालीम, सलाहियत साजी और रिवायती तरबियत से मुतालिक हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहदे CETA पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस अहम मुआहदे के तहत भारतीय बरामदात पर बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे भारत और बरतानिया के दरमियान दिफाई शराकतदारी में गहराई और आवाम के लिए खुशहाली लाने के दोनों मुल्कों के मुश्तरका अज़्म का इजहार होता है। इस तारीखी मुआहदे के लिए मई 2021 में तौसीशुदा तिजारती शराकतदारी और 2030 के भारत बरतानिया खाके की मंजूरी के साथ शुरू किया गया था, जिसमें तिजारत को 2030 तक दुगना करके 100 अरब अमरीकी डॉलर की सतह तक ले जाने का निशाना तय किया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत बरतानिया तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद आलमी सतह पर एक दयानतदार, मुस्तहकम और मुसाबकती मईशत बनने के भारत के सफर की जानिब एक बड़ा कदम है। यह मुआहदा आवाम पर मरकूज है, जिसके तहत पूरे समाज को फायदा हासिल होंगे। भारतीय बरामदकारों को बहुत से बुनियादी शोबों में बरतानवी महसूलात मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने से बड़ा फायदा होगा। अभी तक डब्बाबंद खुराक पर 70% तक, समंदरी मसनूआत में 21% से ज्यादा, इंजीनियरिंग और आटोकल पुर्जों पर तकरीबन 18%, चमड़े और जूते चप्पल पर 16% तक, कपड़ों और मलबूसात पर तकरीबन 12% तक टैक्स दिया जाता है, लेकिन अब इन सभी चीजों पर से टैक्स पूरी तरह हटा दिया जाएगा। इससे बरतानिया की मार्केट में भारतीय बरामदात की मुसाबकती सलाहियत में खातिरख्वाह इजाफा होगा। किसानों, माहीगीरों, MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए मौके पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: भारत की सबसे बड़ी आलमी टेक्सटाइल नुमाइश भारत टैक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने किया। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत टैक्स वजीर आजम का विजन है। उन्होंने बताया कि यह तकरीब अब एक बैन अल्कवामी शक्ल इख्तियार कर गई है और हर साल इसमें नुमाइश करने वालों, खरीदारों, फरोख्त करने वालों और उसको देखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल इस तकरीब में 130 मुल्कों के 60,000 खरीदार और नुमाइश करने वाले शिरकत कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत टैक्स में MSMEs और एंटरप्रेन्योर भी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ किए गए आज़ाद तिजारती समझौते भी टेक्सटाइल शोबे को फायदा पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: इफ्तिदाई तकरीब में अलग अलग रियासतों के टेक्सटाइल वुजरा और टेक्सटाइल के वजीर ममलिकत पवित्र मार्गरेटा ने भी शिरकत की। इस तकरीब में टेक्सटाइल, फैशन, पायदारी, टेक्नोलॉजी, इख्तरा, सरमायाकारी और बैन अल्कवामी तिजारत के शोबों में भारत की बढ़ती हुई आलमी लीडरशिप को भी दिखाया जा रहा है। पार्लियामानी और अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू आज दोहा के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे का मकसद भारतीय हुकूमत और अवाम की तरफ से कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करना है। वजारत खारजा ने बताया कि शेख अमीर का जदीद कतर की तामीर में अहम तरीन रोल था, वो भारत के करीबी दोस्त थे। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने कोल्ड की बीमारी को एक ऐसी बीमारी करार दिया है जिसके बारे में फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाना जरूरी है। यह ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हुक्म पर किया गया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि इस नई हिदायतनामे के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट हिफ्जान सेहत इदारों को कोल्ड की बीमारी के तशखीस शुदा केस की रिपोर्ट नामजद सेहत हुकाम को देना लाजमी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि शुमाल मशरकी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में कल तक यही सूरत हाल रहेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई है। मौसम महकमे ने बताया कि अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, गंगा के मगरबी बंगाल वाले इलाके, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और हवाओं के झक्कड़ चलने के इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका के टेक्सास के डालास स्टेडियम में आज रात सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। फ्रांस लगातार तीसरी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाना चाहेगा। दूसरी तरफ स्पेन 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद से पहली मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। फ्रांस क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर, जबकि स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। मर्दों की भारतीय क्रिकेट टीम आज 3 एकरोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगी। यह मैच बर्मिंगम के एज वेस्टन मैदान में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शुरू होगा। सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम को मजबूती फराहम करने के लिए वापसी कर रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी टीम में दोबारा शामिल हो रहे हैं। भारत आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 बैन अल-अक़वामी सीरीज में शिकस्त के बाद इसे एक रोजा सीरीज में शानदार वापसी की कोशिश करेगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने आबनाए हुरमुज में हाली हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा रुकनियत के लिए फिलिस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाजे के 2 रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क्यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले ओडीआई में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. New Delhi strongly condemns attack on 2 vessels carrying 30 Indian seafarers in Strait of Hormuz. Says violence disrupting free and safe navigation through international waterways. India backs Palestine's bid for United Nations membership, reaffirms two-state solution to conflict between Palestine and Israel. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom to come into force from tomorrow. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, begins in New Delhi to showcase country's growing leadership in textiles sector. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Bihar and Odisha today. France to take on Spain in first semi-final in FIFA World Cup tonight in Texas. And in cricket, India to lock horns with hosts England in first ODI at Birmingham this evening. India has expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Al-Bahya and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. The Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the External Affairs Ministry, and a strong protest against these attacks was lodged with him. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. The External Affairs Ministry said in a statement that of the 12 Indian nationals on board MT Al-Bahya, one has lost his life and another has been injured. Of the 18 Indian nationals on board MT Mombasa, 9 have sustained injuries, including 2 who are reported to be seriously injured. The ministry extended condolences to the family of the deceased Indian national and wished speedy recovery to those injured. The Indian mission and post in the UAE are closely monitoring the situation and are in touch with the UAE authorities to ensure all possible assistance to the affected Indian seafarers. New Delhi has strongly condemned these attacks and acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz. India has also reiterated deep concern on account of the resumption of attacks and escalation of hostilities in the West Asian region and called for immediate cessation of violence and a return to dialogue and diplomacy in the interest of peace, security and stability in the region. Meanwhile, India today summoned Iranian Deputy Chief of Mission Mohammad Javad Hosseini following an Iranian missile strike on two UAE-flagged oil tankers in the Strait of Hormuz, which killed one Indian national and injured several others. Hosseini was seen leaving the Ministry of External Affairs headquarters in New Delhi after meeting officials. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. military's Central Command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Shahbahar, Jask and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage, while it responded with attacks targeting Bahrain, Jordan and two tankers associated with the United Arab Emirates traveling through the strait, killing one mariner and injuring eight others. Earlier yesterday, President Donald Trump announced that the U.S. will reinstate a blockade on Iranian shipping in the Strait of Hormuz and impose a 20% charge on cargo transiting the strategic waterway to cover the cost of maritime security. On the other hand, Iran has asserted its authority over the Strait of Hormuz and rejected the U.S. move. India has reaffirmed continued support to a two-state solution as well as to Palestine's membership of the United Nations. Secretary in the Ministry of External Affairs, Sri Priya Ranganathan, has said India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She said this while addressing the second ministerial meeting of the Palestine Donor Group in Brussels yesterday. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. Ms. Ranganathan noted that India's projects are demand-driven and largely centered on healthcare, education, capacity building, and vocational training. She also announced several new projects focused on rehabilitation, health, education, and vocational training. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling trade to $100 billion by 2030. More from our correspondent.
4: The implementation of the India-UK trade agreement marks a major step in India's journey towards becoming a globally integrated, resilient and competitive economy. With the agreement coming into force, Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariffs on several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exports in the UK market, generate new opportunities for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. Indian service providers in IT and IT-enabled services, financial services, healthcare, education, engineering, telecommunications and consultancy services will benefit from enhanced market access and greater regulatory certainty. With Dipendra Kumar, Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
3: India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
5: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी

0: ये हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी है। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% एमएसएमई आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
1: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन या यार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @YARNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम है एक ही कलाकार और कलाकार जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए आज की तारीख क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज तारीख है 14 जुलाई। आज वो दिन है जो कि भारतीय सिनेमा और संगीत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसकी चमक कभी फीकी पड़ ही नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज सुरों के उस मसीहा की पैदाइश का दिन है जिन्होंने अपनी धुनों से न जाने कितने दिलों को धड़कना सिखाया। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार रोशन लाल नागरथ को, जिन्हें हम सभी अदब और मोहब्बत से सिर्फ रोशन के नाम से जानते हैं। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं के इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी हाँ बिल्कुल, हम भी क्या मिसाल दें रोशन साहब के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गुजरे दौर के फिल्मी गलियारों में रोशन साहब को रागों के राजा के रूप में माना जाता था। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि शास्त्रीय संगीत में उनकी पकड़ इतनी गहरी थी कि जब वो किसी राग को फिल्मी गीत में ढालते थे तो सीधे सुर दिल में उतर जाते थे। ऐसे संगीत बनाने वाले रोशन साहब का जन्म 14 जुलाई सन 1917 को गुजरावाला में हुआ था और दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो से, जी हाँ यही आकाशवाणी में, उन्होंने एक मैंडोलिन और इसराज वादक के रूप में अपने सफर की थी शुरुआत। और यही दिल्ली की आबोहवा उनके संगीत में हमेशा रची बसी रही। लेकिन दिल्ली से उन्होंने सफर किया मुंबई तक का। मुंबई में जाकर वहां पर उनका जो शुरुआत थी वो बहुत आसान नहीं थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और तब कहीं बहुत से स्ट्रगल के बाद उन्हें फिल्म मिली 1950 में आई फिल्म बावरे नैन, और इस फिल्म ने उनकी तकदीर को पूरी तरह से बदल दिया। फिल्म में राज कपूर और गीता बाली के ऊपर फिल्माया गया एक खूबसूरत सा गीत जो अभी हम आपको सुनवाने वाले हैं, इस गाने ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि ये जो नया सितारा बॉलीवुड के आसमान पे चमकने के लिए आया है वो ऐसे ही नहीं है बल्कि चमकेगा और बहुत खूब चमकेगा। तो लीजिए सुनते हैं फिल्म बावरे नैन से ये गीत गीता दत्त और मुकेश की आवाज़ में।

जी दोस्तों, रोशन साहब के संगीत की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी सादगी। उनके गानों में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का शोर नहीं होता था, बल्कि उनके गानों में अल्फाजों और गायकी को निखरने का पूरा मौका मिलता था। और शायद यही वजह थी कि साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी और शैलेंद्र जैसे महान गीतकारों के साथ मिलकर उन्होंने जो जादू जगाया वो वाकई में बेमिसाल था। और भाई दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं रोशन साहब की, तो कव्वालियों को हम कैसे भूल सकते हैं। फिल्म बरसात की रात की वो खूबसूरत सी कव्वाली आज भी इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन कव्वालियों में शामिल है। मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, सुधा मल्होत्रा और लता मंगेशकर की आवाज़ को उन्होंने जिस तरह से एक धागे में पिराया, वो काम सिर्फ और सिर्फ रोशन साहब ही कर सकते थे। तो लीजिए सुनते हैं वो खूबसूरत सी कव्वाली।

भाई वाह, वाकई में मजा आ गया इस कव्वाली को सुन के। क्या खूब कव्वाली है। शायद यही वजह है कि रोशन साहब को शुरू कर राजा कहा जाता था। क्या खूब कव्वाली की। वैसे रोशन साहब के से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा आपको बताती हूँ। बात है साल सन 1964 की। फिल्म बन रही थी चित्रलेखा, और इस फिल्म में एक गाना था जिसे राग यमन कल्याण पर बनाना था। रोशन साहब ने धुन बनाई और साहिर साहब से ने बोल लिखे थे, और वो बोल थे मन रे तू काहे ना धीर धरे। और जब ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ तो खुद रफ़ी साहब ने कहा था कि रोशन भाई इस गाने ने मुझे अमर बना दिया। और वाकई में उनकी कही हुई ये बात सच हुई, क्योंकि बीबीसी के एक सर्वे में इस गीत को हिंदी सिनेमा का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट सॉन्ग चुना गया। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

वाकई में अमर गीत अमर संगीत। आप जुड़ रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं सुरों के राजा रोशन साहब के बारे में। हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोतागण जिनके संदेश भी हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है दादा बाबू रोड गिरढ़ी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन, बाबू अहद, मिफ्रा नाज, बेबी चाहत के साथ। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम, कृष्णा देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत जानकारी इन्होंने हमसे शेयर की है रोशन साहब के बारे में। लिखते हैं कि रोशन साहब ने उस्ताद अलाउद्दीन खान से संगीत और सरोद की शिक्षा ली और अपने करियर के शुरुआती वर्षों में उन्हें मुंबई में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और उनके शुरुआती गीत बहुत शानदार थे लेकिन फिल्में फ्लॉप होने के कारण उन्हें लंबे समय तक पहचान नहीं मिल पाई थी। और भी बहुत सी जानकारी उन्होंने हम तक पहुँचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु हमारे साथ जुड़े हैं। इशक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशव रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़े हैं। अजीत जी लिखते हैं कि जिस तरह से शोले फिल्म में जय और वीरू की जोड़ी कमाल कर गई उसी तरह इंद्रप्रस्थ पर अंजू पांडे जी और प्रीति त्यागी जी की जोड़ी कमाल प्रस्तुति का अंदाज। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। खुश ये अगला संदेश भेजा है गुरमीत सिंह मीता जी ने साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी का। अगला संदेश हम तक आया है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांश जी का, ग्राम ममना, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उन्होंने संदेश भेजा है। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है उसको पहुंचाने वाले अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक, मधु नायक के साथ पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से। ये संदेश हम तक आया चिरमिरी कुरासी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे के साथ। गांव की टोड़ी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम, तबस्सुम, तरन्नुम, तराना, हिना सीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरहरा दरवाजा एटा से हमारे साथ जुड़े हैं नबी हसन अब्बासी। अगला संदेश हम तक आया उसको भेजने वाले हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। दोस्तों अगला जो संदेश हम तक आया है उसको पहुंचाने वाले हैं, ये संदेश भेजा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो ने। सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन मुखी जी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से और हीरामणि वर्मा जी जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा से। दोस्तों ये थे वो संदेश जो हम तक पहुंचे, और भी बहुत से संदेश आए लेकिन अभी हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत

जी दोस्तों, वाकया खूब कव्वाली रही। वाकई में जी चाहता है कि वक्त थोड़ा सा और आगे खिसके और हम इस कार्यक्रम को और लंबा करें, लेकिन वक्त की जो सुइयां हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और आज इस सफ़र में हमने रोशन साहब के बारे में कुछ बातें की। वाकई में रोशन साहब के करियर का वो सुनहरा दौर था 60 का दशक, जहाँ उन्होंने एक से बढ़कर एक नायाब हीरे तराशे। ताजमहल, आरती, बहुबेगम, भीगी रात, ममता और अनूठा बंधन, कुछ फिल्में ऐसी थीं जिनमें से ताजमहल के सदाबहार संगीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 1959 में, महज 50 साल की उम्र में, जब वो अपने करियर के शिखर पे थे, एक दिल के दौरे ने इस महान फनकार को हमसे छीन लिया और वो बहुत जल्द चले गए। लेकिन संगीत की जो विरासत वो छोड़ के गए हैं वो वाकई में अमर है। और आज उनकी इस विरासत को उनके बेटे राकेश रोशन, मशहूर संगीतकार राजेश रोशन और उनके पोते ऋतिक रोशन पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। रोशन साहब, आपकी बनाई हुई जो उनकी धुनें थी वो धुनें हमारे सुनेपन की साथी हैं। और इस कार्यक्रम की समाप्ति के वक्त, जाते वक्त, मैं वही खूबसूरत सा गीत छोड़े जाऊंगी जो वाकई में हमारे जो दिल की भावनाएं हैं जो हैं उन सबको पूरी तरह से खरा उतरता है। जाते जाते उस अमर कृति की, इस प्यारी सी कृति को छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए। तो मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, और जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि मैटिनी मेलोडीज कार्यक्रम लेकर आ रही हैं आप सभी की पसंदीदा अंजू पांडे। तो मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: धन्यवाद प्रीति, और खूबसूरत सी प्रस्तुति आपने दी, और आप भी हमारे श्रोताओं के दिल में हमेशा ऐसी ही समाई हुई रहेंगी। फिलहाल वक्त हो गया है, दोपहर के 3 बज चुके हैं, और आप जानते हैं कि ये वक्त किस प्रोग्राम का है, मैटिनी मेलोडीज। और इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज हम टाइम मशीन में बैठेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे उस दौर को जिसे भारतीय सिनेमा का गोल्डन इरा यानी कि 60 का दशक कहा जाता है। वो दौर जब रोमांस हवाओं में था, शायरी गानों में थी और गानों में एक रूह हुआ करती थी। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज का सफ़र बेहद हसीन होने वाला है, और आप भी इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बन सकते हैं। जानते हैं ना कैसे? मेल के ज़रिए। मेल भेजने के लिए आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए आप और मैं एक ही सफ़र में लंबे उस फिल्मी सफ़र तक चलेंगे जहाँ पर खुशियाँ हैं, रोमांस है, प्रेम है और खूबसूरत से नगमे हैं।
1: सजना

सबसे पहले हम बात करते हैं 1960 की उस ऐतिहासिक फिल्म से जिसने हिंदी सिनेमा की परिभाषा बदल दी। जी हाँ, बात कर रहे हैं के आसिफ की शाहकार फिल्म मुगले आजम। इस फिल्म का एक गाना तो आप सबको याद ही होगा, प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक गाने को फिल्माने के लिए डायरेक्टर के आसिफ ने जो शीश महल सेट बनवाया था उसे बनाने में पूरे 2 साल लगे थे। बेल्जियम से कांच मंगवाया गया। जब शूटिंग शुरू हुई तो कैमरामैन परेशान हो गए क्योंकि लाइट कांच से रिफ्लेक्ट होकर कैमरे के लेंस पर पड़ रही थी। आखिरकार बहुत सूझबूझ के साथ शीशों पर हल्का मोम यानी कि वैक्स लगाकर उस चमचमाते गाने को शूट किया गया। तो फिलहाल इस गीत को तो नहीं सुनवा रहे, लेकिन लता जी की आवाज़ में ही इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत है, उसको आप सुनिएगा।

साठ का दशक और उसमें हम देव आनंद साहब की बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। उनका स्टाइल और उनका रोमांस, तभी तो वो स्टाइल और रोमांस के किंग हुआ करते थे। उनकी सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और पफ वाले बालों का स्टाइल हर लड़का कॉपी करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देव साहब के काले कोच के दीवाने इस कदर थे कि कोट को भी बीच में आना पड़ गया। हुआ ये था जनाब कि जब देव आनंद साहब काला कोच पहनकर सड़कों पे निकलते थे तो लड़कियां उन्हें देखने के लिए छतों से कूदने को तैयार हो जाती थी। दीवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से कोर्ट ने देव आनंद साहब को सार्वजनिक जगहों पर काला कोच पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। है ना कमाल का क्रिस। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म काला पानी से ये खूबसूरत सनकमा।

जी हाँ, आपने भी इस गीत पर ठुमके मार ही लिए। अब बात करते हैं 60 के दशक की डाकुओं पर बनने वाली फिल्मों के लिए, क्योंकि ये साल डाकुओं पर बनाने जो फिल्में थी उनके लिए भी जाना जाता है। 1963 में एक फिल्म आई थी मुझे जीने दो, इसमें सुनील दत्त साहब ने एक डाकू का किरदार निभाया था। और इस फिल्म की खासियत ये थी कि इसकी शूटिंग किसी स्टूडियो में नहीं हुई थी, बल्कि चंबल के असली बिहड़ों, जो घाटी होती है चंबल की, वहाँ हुई थी। और उस वक्त चंबल में असली डाकुओं का आतंक था। सुनील दत्त साहब ने खुद असली डाकुओं के गैंग से मुलाकात की, उनसे परमिशन ली और उनकी मौजूदगी में शूटिंग की। डाकू भी सुनील दत्त के इस हौसले और व्यवहार से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने पूरी शूटिंग के दौरान फिल्म की क्रू की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई थी। तो बात जब इसी फिल्म की है तो सुनते हैं इसी फिल्म से ये गोल्डन सॉन्ग।

बीच धारे जो जाओ तो जय पे करो उस पारी।

आपको कोहिनूर फिल्म याद है और इस फिल्म का गाना जो आज भी शास्त्रीय संगीत के शौकीनों की पहली पसंद है, मधुबन में राधिका नाचे रे। इस गाने में दिलीप साहब को स्क्रीन पर सितार बजाना था। कोई भी आम एक्टर होता तो बस उंगलियां हिलाकर एक्टिंग कर देता, लेकिन दिलीप साहब तो दिलीप साहब थे। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक मैं सच में सितार बजाना नहीं सीख जाता, मैं ये गाना शूट नहीं करूंगा। उन्होंने पूरे 6 महीने तक उस्ताद हलीफ जफर खान साहब से बकायदा सितार बजाने की ट्रेनिंग ली। नतीजा, जब आप आज भी ये गाना देखते हैं तो उनकी उंगलियां सितार के तारों पर बिल्कुल सही जगह बैठती हैं। चलिए सुनते हैं कोहिनूर फिल्म से ही ये रफी साहब की आवाज में गीत।

तो दोस्तों, रात तो अभी नहीं है, काफी वक्त है रात होने में, लेकिन एक गीत इतना खूबसूरत था कि हमारा दिल करा कि इस गीत को हम आप तक पहुंचा दें। और अब हम बात करते हैं फिल्म संगम की, राज कपूर साहब की फिल्म संगम। और राज कपूर साहब पर फिल्माया एक खूबसूरत सा गीत। उस गीत को फिल्माने के लिए एक खूबसूरत और शांत झील के पास शूटिंग करनी थी। जब राज साहब लोकेशन पर पहुंचे तो पता चला कि वो झील एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की है और वहाँ पानी बहुत कम था। राज कपूर साहब ने जिद पकड़ ली कि शूटिंग तो यहीं होगी। उन्होंने आनन फानन में कई सारे पानी के टैंकर मंगवाए और पूरी झील को पानी से भर दिया ताकि स्क्रीन पर वो भव्यता दिख सके जो चाहिए थी। फिल्म मेकिंग के लिए ऐसा जुनून सिर्फ राज कपूर साहब में ही हो सकता था। सुनते हैं उन्हीं की ये खूबसूरत सी फिल्म संगम से ये गीत।

आपके संदेश भी हम तक पहुंचे हैं और उनको हम शामिल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल जी गांधीनगर गुजरात से हमारे साथ हैं। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना आशी, चैतन्य मस्कीन, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता और केशु खुराना जी हमारे साथ हैं। तुलसी मस्कीन जी का एक और संदेश पहुँचा है और अजीत भापसर जी हमारे साथ, प्रमिला भापसर जी के साथ बीरनगांव गुजरात से जुड़े हुए हैं। और ये संदेश हमारे पास सुदर्शन मुखी जी का, अनिता मुखी, सिमरन जी का शांतिनगर सोनीपत से आया है। ऊपरकोट मोहल्ला चौकंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैदाबासी निगत, परवीन शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और परिवार के सभी सदस्य हैं। संजय निंगिया, नमन निंगिया पार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हम दिल से आभार करते हैं। एक और संदेश है, इसको भी हम शामिल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम जी हमारे साथ हैं। तो आप सभी का हम शुक्रिया करते हैं। और अब इस प्रोग्राम का एक खूबसूरत सा अंतिम गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूं और फिर अगली मुलाकात में फिर से वही खूबसूरत से गीतों की एक माला हम दोबारा लेकर आएंगे। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: वुमेन है वो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा काम कर रही हैं. लाइक जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंस की, तो जो इकोनॉमिक है वो भी हमारी बढ़ती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं. और बहुत सारे फील्ड्स में जब हम बढ़ते हैं तो हमारी जो एक इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हम होते हैं, तो उससे भी प्रोग्रेसिव वुमेन आगे बढ़ती हैं. और उसके साथ साथ माशरा भी बहुत आगे जाता है. और एक जब औरत पढ़ती है तो वो सिर्फ एक औरत ही नहीं होती है, उसके साथ चार पीढ़ियां पढ़ती हैं.
1: जी.
0: और जब एक मर्द पढ़ता है तो वो सिर्फ मर्द ही पढ़ता है. उसके बाद जैसे मैं बात करूंगी कि रीडिफाइनिंग एंड सोसाइटल नॉर्म्स, कुछ ऐसे नॉर्म्स भी हैं आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे हिंदुस्तान में, जो नॉर्म्स को लेकर अभी भी लड़कियां बहुत पीछे हैं. एक तरीके से मैं कह सकती हूँ स्टिग्मा है. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इंसान को एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर लड़की को पढ़ना बहुत जरूरी है.
1: जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से बहुत सारे आपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात की. और अब मैं संतोष साहिबा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप इस सब इश्यूज को कैसे देखती हैं उसके बारे में बताइए.
2: बहुत बहुत शुक्रिया मैम. मैम, जैसे मैं आजकल की सोसाइटी को देखती हूँ, आज के दौर को देखती हूँ, और आज से पीछे 20-30 साल पहले का जो दौर था
1: जी,
2: वो ख्वातीन के लिए बहुत ही कंजर्वेटिव था.
1: जी,
2: बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी था. मतलब बहुत ओल्ड, उनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत बाउंडेशन होती थी. और अगर पढ़ लिख भी लेती थी तो उसमें भी कौन सा फील्ड चूज़ करना है उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते थे कि ये ख्वातीन के लिए अच्छा नहीं है या ये ख्वातीन के लिए अच्छा है. तो अब जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आया है, उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अब जो ख्वातीन है उन्होंने अपने हिस्से की फ़ाइट करके खुद को एजुकेट किया है, जो बहुत अच्छी बात है. और अपने हकूक के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, अब पढ़ लिख रही हैं और अब कहीं ना कहीं सोसाइटी इस चीज़ को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है. हालांकि बहुत सारी जगह अभी भी बहुत वो पुराने ख्यालों के लोग हैं, बट फिर भी मैंने देखा है कि अभी भी ख्वातीन जो है अब जो है वो काफ़ी पढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में वो आगे हैं. जैसे एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, पायलट भी बन रही हैं, मीडिया लाइन में भी बहुत अच्छा कर रही हैं. और ना सिर्फ वो एक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी हैं, अगर उनकी पर्सनल लाइफ भी उठाकर देखी जाए तो वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही एक मजा हुआ जिसको कहते हैं कि एक पिलर है
1: जी.
2: वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेट करती हैं, अच्छा गाइड करती हैं. और ना वो सिर्फ एक हार्ड वर्कर, मैं नहीं कहूँगी एक स्मार्ट वर्कर हैं. जैसे पहले लेडीज़ का क्या होता था, उनको बड़ी मेहनत करनी होती थी कि कुछ काम करना है, मार्केट जाना है, मार्केट से लेना. अब उनको सारा, क्योंकि ये कहाँ से आया, एजुकेशन से आया, कि अगर कुछ ग्रोसरी मंगाने, कुछ मंगाने का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं, राइड बुक करनी है ऑनलाइन बुक कर सकती हैं. तो मैं ये कहूँगी कि हमारी सोसाइटी में बहुत चेंजेस आया. और जितने भी ये तालीम याफ्ता है, बहुत ही हमारे आने वाले मुल्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है. बहुत ही मैं कहूंगी कि हमारे मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक एक बैकबोन है.
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि इतिहास की नज़र से अगर हम देखें तो औरतों ने कितनी तरक्की की है. जहां से हम देखते हैं कि औरतों को सिर्फ घर तक महदूद रखा जाता था, या फिर अगर हम गांव की बात करें तो उनको सिर्फ गांव का जो भी माहौल था वहां पे सिर्फ घर तक थी, या फिर थोड़ा बहुत खेतीबाड़ी में हेल्प करती थी. उसके अलावा जब हमने देखा कि पूरी की पूरी तहरीक की है औरतों ने, विमेंस मूवमेंट रही है, जिसका हमने देखा कि एक तरह से उसका फल औरतों को मिला. सो जो जद्दोजहद रही है उसको लेके तालीम लेना औरतों के लिए आसान नहीं था. सो इस पे अब मैं नाजिया साहिबा से बात करूंगी कि नाजिया जी, आप इसको कैसे देखती हैं?
3: हाँ मैम, डेफिनेटली मैं इस चीज़ से इतफाक़ रखती हूँ. जो मैम ने कहा वो बहुत अच्छा कहा है. और मेरी जो सोच है वो ये है कि आज के दौर में अगर तालीम याफ्ता औरत की डेफिनेशन देखी जाए तो एक तालीम याफ्ता औरत सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं है. तालीम याफ्ता औरत होने का जो मतलब है वो अच्छी सलाहियत, फैसले लेने की सलाहियत होनी चाहिए, और वो पूरी सोसाइटी को लेकर के चलती है. मलाला यूसुफ जई का एक कोट था, वन पेन वन चाइल्ड वन बुक वन टीचर कैन चेंज वर्ल्ड. तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानती हूँ और मैं बहुत इसको लंबा नहीं खींचूंगी. लेकिन हाँ, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, ये हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है.
2: जी बिल्कुल ठीक है.
1: जी नाजिया साहिबा, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि हमारे समाज के लिए औरतों की तालीम, औरतें 50% पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। सो अगर आधी पॉपुलेशन तालीम याफ्ता नहीं होगी तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। सो इस पे एज एन एजुकेटर, एज ए स्कूल टीचर, आप दरख्शा साहिबा कैसे देखती हैं?
0: अगर जैसे कि मैम ने कहा कि बहुत टाइम पहले अगर हम देखें तो बहुत रूढ़िवाद था, लेकिन आज वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि घर से निकलना ही एक बहुत बड़ा टास्क था औरत के लिए, जो आज खत्म हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइक जैसे कि कन्वेंस की प्रॉब्लम। पहले हम अगर बात करें तो इतनी फैसिलिटी बिल्कुल नहीं थी कि लड़कियां स्कूल आ जाएं। सबसे पहला बड़ा टास्क ये है कि भाई लड़कियां स्कूल आ जाएं। जैसे कि मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल की भी बात करूं कि गवर्नमेंट बहुत पॉलिसीज निकालती है, बहुत ज़्यादा आयुष्मान पॉलिसीज हैं जैसे, तो उसमें सारी एक्टिविटीज़ वगैरह हम कराते हैं, स्टिल बच्चे स्टेशनरी से लेके किताब से लेके उनकी हर एक फैसिलिटी, इवन मेडिसिन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, लेकिन और सारा खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है, उसके बावजूद भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए लोग नहीं भेजते। जैसे राष्ट्र नीति की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्र नीति में यही है कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाना है हमें, तो एक्टिविटी बेस्ड में हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं ताकि बच्चे सीखें। और बहुत खर्चा गवर्नमेंट हमारे मतलब बहुत ज़्यादा कर रही है किताबों पर, उनके स्कूल के सारी मेडिसिन से लेके किताबों से लेके हर एक चीज़ स्कूल को जो प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट स्कूल को, वो सरकार से मिलती है, तो सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। बट कुछ घर ऐसे हैं जो आज भी लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
1: जी सही बात कही आपने, एज एन एजुकेटर संतोष साहिबा आप इसको कैसे देखते?
2: आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे सरकार ने बहुत सारी स्कीम लाए हैं ख्वातीन के लिए स्पेशली, जैसे कुछ कुछ स्कूल में एडमिशन फीस जो होती है वो ख्वातीन के लिए थोड़ी कम होती है लड़कों से, और कहीं कहीं सिलेक्शन प्रोसेस जब जॉब्स में होता है तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी कुछ कुछ रियायतें उन्होंने दी है, कुछ कुछ रिजर्वेशन ख्वातीन के लिए दिया है कि उनकी एज थोड़ा ज्यादा भी होगी तो वो उसको सिलेक्ट करेंगे कहीं कहीं। तो बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारी पॉलिसीज हमारे मतलब ख्वातीन के हकूक के लिए बना रही है, जो बॉयज़ के लिए तो है ही लेकिन उनसे थोड़ा सा और बढ़ के ख्वातीन के लिए भी गवर्नमेंट बना रही है, तो ये एक अच्छी बात है।
3: मैम मैं रक्षा मैम की बात से बहुत इतफाक रखती हूँ, वो बिल्कुल सही कह रही है और मैम ने भी सही कहा है, लेकिन मेरा मानना यह है, सवाल ये है कि लड़कियों की एजुकेशन तो है ही, बट क्या हमारा समाज उनकी एजुकेशन को एक्सेप्ट कर पा रहा है? मुद्दा ये है क्योंकि बहुत सारी जो फैमिलीज हैं, क्योंकि अभी तक चाहे हम मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रही, बट हमारे माशरे में बहुत सारी जगह ऐसा है, उन्होंने डेवलपमेंट किया है लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ लड़कियों की एजुकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। एंड सेकेंड थिंग की अगर हम बात करें बहुत ऊपर लेवल पे जाने की, तो मुझे लगता है कि लड़कियां 12th पास कर जाएं वही बहुत बड़ी बात है। रक्षा मैडम ने एक बात कही थी कि लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिलनी चाहिए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बट सबसे बड़ा फियर ही यह है कि एक तो सोसाइटी एंड सेकेंड थिंग अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड बहुत सारी जगह पर पुरानी सोच लोगों की जो हम अभी तक नहीं बदल पाए मैम।
1: जी नाजिया साहिबा, आपने बहुत अच्छे जो दो तीन पॉइंट्स कहे उसमें मैं ये कहूँगी कि जो आप कह रही हैं उससे मैं पूरी तरह से इतफाक करती हूँ कि जब औरत बाहर निकलती है उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स करनी पड़ती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके साथ जो एजुकेटेड औरत है, जो तालीम याफ्ता औरत है, उसको क्या क्या किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं?
2: जी मैम, मैं आप की बात पर बोलूँगी कि जितनी भी तालीम याफ्ता ख्वातीन हैं उनको जब वो बड़ी पोजीशन पर भी जाती हैं बहुत एजुकेट होने के बाद, तो उनको बहुत सारी जगह पर ऑफिसेस में या घर पे उनको हर किसी न किसी जगह पर उनको ना उनको लेट डाउन किया जाता है।
3: सॉरी मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको बहुत रोका जाता है और उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है,
2: राइट।
3: बट मैं एक स्टेप पीछे आऊंगी और मैं ये कहना चाहूंगी इसमें कि मैंने खुद और मेरा एक्सपीरियंस भी ये है, क्योंकि लीगल फील्ड में अभी तक जितने भी मैटर्स मैंने किए हैं उसमें हमें ये सच्चाई भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है, चाहे वो सास के रूप में देख लें, बहन के रूप में देख लें, माँ के रूप में देख लें, आप किसी भी रूप में देखें। मैं ये कह रही हूँ, आपने ये कहा अभी कि उनको मर्दों की तरफ से क्रिटिसिज्म झेल

0: पड़ता है. मैं ये कह रही हूँ मर्दों के पास बातें कहाँ से आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी माँ भर रही होती है, कहीं ना कहीं उनकी भाभी भर रही होती है. बहुत कम मर्द ऐसे हैं जो हाँ सास का रोल अदा करते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज को.
1: सही कह रहे हैं.
0: और सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं. और बहुत सारी जगह पे मुझे लगता है कि औरत को पहले खुद को भी बदलना चाहिए,
1: जी.
0: मर्दों पे तोहमत लगाने की बजाय उनको खुद भी. मैं इसमें ये नहीं कह रही कि औरतें गलत हैं, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन हर जगह भी सही नहीं है. पढ़ाई और तालीम याफ्ता होने का मकसद मर्दों से मुकाबला बिल्कुल नहीं है, मैं इस चीज को नहीं मानती. हाँ, तालीम का मकसद ही है कि आप अपनी फैमिली की इज्जत करें, पूरी सोसाइटी को, पूरी फैमिली को लेके चलें. तालीम होने का मकसद ही ये है कि आप उस चीज को और अच्छे से समझें.
2: एग्जैक्टली.
3: इनसिक्योरिटी बहुत है
2: जो इसमें हम अंडरलाइंग फैक्टर्स समाज के देखते हैं. सो जो आपने बात कही नाजिया जी और दरख्शा जी, इसमें हम ये देखते हैं कि समाज में अगर डिसीजन मेकिंग पावर औरत के पास आ रही है तो जो उसकी फैमिली है वही उसको कहीं ना कहीं कर्ब करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है. सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हम तालीम को इम्पोर्टेंट मानते हैं कि तालीम एक औरत के वकार के लिए, उसकी इज्जत नफ्स के लिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए इम्पोर्टेंट है.
0: मैम, ये जो हमारे समाज में आपने कहा कि आप डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर जो बात कही, ये बिल्कुल सही कही है और ये होनी भी चाहिए. लेकिन ये अगर हम बेस देखें तो हमारा पीछे से चलता आ रहा है. बेस कैसे चलता आ रहा है? यहाँ पे जो बड़ों ने एक सीख चला दी कि नहीं औरत यही करेगी, औरत का क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया, आदमियों का क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया. बट आज की कंडीशन हम देखें तो औरत बाहर के भी कर रही है और अंदर के भी कर रही है काम. प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उसको प्रूव करने के लिए वो हर कोशिश करती है. लेकिन जब वो उसको प्रूव करने की कोशिश करती है तो मसला यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा आगे चल रही है, फिर उनकी ईगो पे बात आ जाती है.
2: आज के वक्त पे जब हम देख रहे हैं कि तालीम याफ्ता औरत जब बाहर निकल रही है तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हमने बात की. आगे हम बात करेंगे कि इनके लिए किस तरह से हम सॉल्यूशन को देखते हैं. तो इस पे लीगल पॉलिसी पे और आगे अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप कैसे इसको देखती हैं?
0: उसमें मैम, अगर मैं लीगल पॉइंट की बात करूँ तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 15 है, 14 है, जो इक्वालिटी की बात करता है. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, ये तो एक अलग ही पॉइंट है. लेकिन सोसाइटी को ये समझना भी ज़रूरी है कि हम इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें. और मुझे लगता है सब साथ में मिलकर इस चीज़ को करेंगे, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो या फैमिली हो. सबसे मेन चीज़ है एक लड़की की पढ़ाई लिखाई के ऊपर अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तो वो आगे चल के भी उसके लिए बेनिफिशियल होता है और कोई जल्दी से परेशान भी नहीं करता, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो या कहीं भी हो, एनी अदर प्लेस.
3: लेकिन जो ख्वातीन हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि जैसे अगर वो बहुत पढ़ लिख गई हैं या किसी एक डेजिग्नेशन पे हैं तो थोड़ा सा उनमें भी अगर आप देखेंगे डाइवोर्स केस अगर हम देखें तो ज़्यादातर होते हैं तो वो एक अच्छे डेजिग्नेशन पे होती हैं, तो उनमें एक एटीट्यूड क्रिएट होता है. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो भूल जाती हैं. उन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं भूलना है. पढ़ाई लिखाई का मतलब या आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूलो. तो आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते हुए और आगे अपनी पोजीशन को रखते हुए आपको आगे बढ़ना है समाज में.
2: आपकी बात से मैं यहाँ पे इत्तफाक नहीं करूँगी. मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतों के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है. जो आप कह रही हैं कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी,
3: आपको प्रेशर कितना भी हो लेकिन मैनेज करना है ना, इक्वालिटी के साथ मैनेज करना है, फैमिली के साथ मिलके मैनेज करना है कि फैमिली को भी. अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लियर फैमिली में है वो तो चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकते हैं, बट कुछ लोग जॉइंट फैमिलीज में भी रहते हैं, राइट?
2: आप ही की बात को मैं आगे ले जाके ये कहूंगी कि फैमिलीज की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल औरतें अगर ज्यादा तालीम ले लेती हैं तो अभी शादी के मसले हम देख रहे हैं. एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन है जो कि सिंगल औरतों की है. अगर वो ज्यादा तालीम लेती है तो मुआशरा उनको किस तरह से देखता है और उनकी खुद की डिसीजन मेकिंग केपेबिलिटीज फिर उनको एडजस्टमेंट के इश्यूज के साथ खड़ा कर देती है.
1: यहाँ जो ख्वातीन हैं, जो तालीम याफ्ता ख्वातीन हैं, उनको बहुत बैलेंस्ड वे में रहने की जरूरत है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ख्वातीन जो पढ़ी लिखी जो ख्वातीन हैं सिर्फ वही सही हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं वो सही नहीं है, या ऐसा भी नहीं होता कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो बिल्कुल सही हैं और

0: पढ़ी लिखी वुमेन जो है वो सही नहीं है. यहाँ दोनों ही चीज़ें मिलती हैं देखने को. जैसा आपने ही बोला कि जो अच्छा पढ़ लेती हैं, अच्छे डेजिग्नेशन पर होती हैं, फिर उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है. तो वही मैं कहूँगी कि एक पढ़ लिख के इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है और एक दूसरी तरफ वाइज होना एक अलग चीज़ है. तो हम जहाँ पढ़ लिख कर इंटेलिजेंट तो हो गए हैं, वहाँ हमें वाइज भी होना जरूरी है कि हमें फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है. अपनी जो हमारे जो एक कल्चर है इंडियन कल्चर, उसको कैसे मैनेज करना है कि ऐसा ना हो. क्योंकि क्या है कि हम देखिए हमारे पूर्वज जो हमारी बैकग्राउंड रही है, बैकग्राउंड तो यही रहे कि लेडीज़ को तो घर में ही रखा जाता था, चूल्हा चौका बर्तन इन्हीं सब कामों के लिए ना, और पढ़ाई लिखाई उनके लिए नहीं होता था. ठीक है, तो अब जब धीरे धीरे लेडीज़ भी उसी तरह से बाहर निकली, पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, नौकरी करना स्टार्ट किया, अच्छी पोजीशन पे जाना स्टार्ट किया, तो हुआ क्या, वो एक क्योस मच गया. वो एक्सेप्टेंस कहीं आई है, कहीं आज भी नहीं आई है. तो वो धीरे धीरे, जब कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, कुछ लोगों ने आज उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया है. तो अगर थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया है तो आने वाले टाइम में और एक्सेप्टेंस हो जाएगी. तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस हम दोनों को ही, दोनों साइड पर जो लेडीज हैं उनको भी रखना पड़ेगा, जो फैमिलीज और जो सोसाइटी हैं उनको भी रखना पड़ेगा. क्योंकि
1: हाँ, आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी मैं, उन खातिन की बात कर रही हूँ. अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, आज भी अगर आप देखेंगे, कि वो जब बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे होते हैं तो वो क्या करते हैं ना, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं. तो वो एक निगेटिव होता है. जैसे मान लीजिए आपके लॉज हैं या आप अपनी फैमिली में भी रह रहे हो, वो बुजुर्ग लोग हैं, अब वो तो उठ के काम नहीं कर सकते, तो वो आपको मैनेज करना है, आप मत करो, बिकॉज़ यू डोंट हैव टाइम.
0: उसीलिए मैंने कहा ना कि वो बैलेंस होना जरूरी है,
1: मैनेज करना.
0: उसके लिए आपको समझ रखना जरूरी है. वहां पे आपकी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी, वहां आपकी समझ काम आएगी. राइट, कि आपको कैसे वाइज होना है, आपको अपना, अपनी एक पर्सनैलिटी, अपना जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और अपनी जो एजुकेशन है वो भी मेंटेन रखनी है, और फैमिली भी मेंटेन रखनी है. क्योंकि फैमिली को आप छोड़ तो सकते नहीं हो,
1: बिल्कुल
0: है ना, कि फैमिली को आपने छोड़ दिया और आके आप अकेले जिंदगी जी लोगे. अकेला कोई भी नहीं रह पाता है, इंडिविजुअल कोई भी नहीं रह पाता है. तो सबको साथ लेके भी चलना है और अपनी भी प्रोग्रेस और कंट्री की प्रोग्रेस, फैमिली की प्रोग्रेस भी हमें साथ में ध्यान में रखनी है.
2: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही संतोष साहिबा, कि हमें समाज को साथ लेके चलना है. समाज को साथ लेके चलने के लिए सिर्फ जिम्मेदारी औरत की नहीं है या आदमी की नहीं है, बल्कि दोनों को साथ में काम करने की जरूरत है.
3: समाज हमारी फैमिली से ही बनता है, परिवारों से ही बनता है, और परिवार जो होता है उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं उन सबको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना है. बच्चों को जिस तरह से बेटों को सपोर्ट किया जाता है, उस तरीके से बेटियों को भी सपोर्ट करें. प्रॉब्लम्स थोड़ी बड़ी करने की बजाय छोटी कर दें, क्योंकि घर में जब बड़े होते हैं, अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे, वो डिसीजन मेकर नहीं होंगे, स्ट्रांग डिसीजन मेकर, तो फैमिली में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं.
2: जब हम तालीम याफ्ता औरतों की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनका हम ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आज के वक्त में बात करें तो हमारी जो राष्ट्रपति साहिबा हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आती हैं, ट्राइबल खवातीन को वो रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर हमारे पॉलिटिक्स में हम बहुत सारी औरतों की प्रेजेंस देखते हैं, मीडिया में बहुत सारी औरतें हैं. कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट थी, सानिया मिर्जा एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं. सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम साइट कर सकते हैं, जिन्होंने समाज में औरतों का नाम काफ़ी आगे पहुंचाया है और समाज में एज एग्जांपल उनको एक इंस्पिरेशन के तौर पे भी देखा जाता है, जिन्होंने औरतों के लिए एक तरह का पाथ ब्रेकिंग रास्ता बनाया है.
3: आपने द्रौपदी मैम का नाम लिया है जो हमारी राष्ट्रपति हैं, और भी हैं, बहुत सारी हैं, कल्पना चावला है, और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बहुत अच्छे सेट होते हैं. लेकिन अगर आप उनका पास्ट उठा के देखें और बैकग्राउंड उठा के देखें तो कहीं ना कहीं उनके पीछे उनकी फैमिली थी, और फैमिली में मदर फादर सभी थे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि फैमिली के साथ, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लड़की के लिए आगे बढ़ने के लिए.
2: जी.
3: क्योंकि जब वो सोसाइटी में जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको उसे नज़रअंदाज करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को भूलना भी पड़ता है, और उन सब में सपोर्ट कौन करता है? फैमिली करती है. फैमिली में भी माँ होती हैं, बहनें होती हैं, भाई होते हैं, भाभी होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी लड़की को आगे बढ़ने के लिए.
0: बड़े बड़े एग्जांपल अभी मैम ने लिए, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू, और इंदिरा गांधी जी थी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, किरण बेदी जी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी. तो इन्होंने भी प्रॉब्लम फेस की होगी अपने टाइम पर, क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं है ज्यादा, उनके बैकग्राउंड, उनके जो स्टार्टिंग से जो होगा क्रिटिसिज्म उन्होंने भी सहा, बहुत सहा होगा डेफिनेटली, बट फिर भी मैं, मुझे लगता है कि हमें रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि यही हमारे मुल्क को इन सारी जो रूढ़िवादिता, जो पुराने ख्याल, जो एक जो माइंडसेट, जो फिक्स माइंडसेट था लोगों का, इवन वो मैं सिर्फ उसमें मर्दों की बात नहीं कहूंगी, उसमें ख्वातीन भी हैं वैसे ही शामिल, तो वो तभी निकल पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब पुरानी पीढ़ी जाती भी रहेगी कुछ कुछ और नए नए लोग आते रहेंगे। जैसे मैं बात करूं अभी जो एक जेंजी जनरेशन पर ही, जो आजकल के मैंने देखा है कि इतनी अच्छी बात है उनके कि वो इतने एम्बिशियस हैं कि वो उनको क्या फायदा दिख रहा है, क्या दिख रहा है आगे, वो उसी में ही लगे हैं, वो देखते नहीं कि क्या कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर हम भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको छोड़ तो नहीं रहे ना, तो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो मेरा एक यही मैसेज है ख्वातीन के लिए कि आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें, और बहुत वाइजली, ना कि एक डिबेट या आर्ग्यूमेंट या एक एटीट्यूड शो करते हुए। किसी को शो डाउन करना हमारा मकसद नहीं है, बट आगे बढ़ना और समझदारी के साथ आगे बढ़ना, और ये पॉसिबिलिटी होगी सिर्फ हम पढ़ लिख कर ही ऐसा कर सकते,
2: पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। जी, हमने बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्कशन किया कि समाज के लिए औरत की तालीम कितनी जरूरी है और कितनी आगे लेके जा सकती है समाज को। इसके अलावा जो हमने बात की कि समाज में तालीम का रोल अपने आप में सोशल चेंज को लेके है, उसको अवेयरनेस के साथ आता है, सो वो लोगों में भी एक जनरेशनल चेंज आ रहा है। जैसे आपने बात की, सोशल मीडिया ने औरतों को काफ़ी आवाज़ दी है, काफ़ी एजेंसी दी है। तालीम के साथ हम ये भी देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, और एक जनरल अवेयरनेस आती है इश्यूज को लेके, समाज को लेके और अपने आसपास के माहौल को लेके। सो ये माहौल को, समाज को, फैमिली को, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं एक तालीम याफ्ता औरत बांधती भी है और उनको आगे लेकर भी जाती है। हमारा डिस्कशन दरख्शां साहिबा, संतोष साहिबा और नाजिया साहिबा के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, बहुत दिलचस्प बातें हम लोगों ने यहाँ पे मौजूए गुफ्तगु रही, और अब हम यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। सामईन, शुक्रिया।
4: सामईन कराम, अभी आप समाप्त कर रहे थे बज़्म ख्वातीन के तहत ये खूबसूरत मुज़ाकरा, मौजू था तालीम याफ्ता ख्वातीन और हमारा मुआशरा। शुराका थी नाजिया सैफी, संतोष सागर, दरख्शां मंसूर और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रही थीं डॉक्टर उज़्मा अजहर। सामीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम की तरतीब पेशकश इंतज़ार सैफी की थी। तो सामीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ, कुछ और मौजूआत के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम बज़्म ख्वातीन ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: मैं हूँ आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदें ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर शाम के 4 बजने को हैं। कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

读特里广播电台，听众朋友们，请收听 Rahat Fateh Ali Khan 唱的歌曲。

印度特里广播电台 听众朋友们 请收听 Nusrat Fateh Ali Khan 唱的 印地语歌曲

印度德里广播电台，听众朋友们，现在我们播送阿贝达·巴云唱的一首歌曲。

Shotin Sukhvinder He Shankar Mahadevan 唱的一首歌曲

0: जानकारी का इस कार्यक्रम में।
1: विजेता, आज सबसे पहले बात करेंगे फीफा विश्व कप 2026 की। चार बेहतरीन टीमें इस समय सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और सभी को अब इंतजार है उन दो महा मुकाबलों का, जिसके बाद फाइनल की दो टीमें पता चलेंगी। सबको पता चलेगा कि कौन सी वो दो टीमें, अभी वो चार
0: जाने वाली
1: अभी वो चार टीमें हैं जो विश्व में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलने के बाद यहां तक पहुंची हैं। और आज मुकाबला होगा कि पहली फाइनलिस्ट टीम कौन सी है और उसके बाद अगला मुकाबला होगा उससे पता चलेगा कि दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी है। तो पूरी रिपोर्ट हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी विजेता चतुर्वेदी।
1: नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत है आप सब।

0: ऐतिहासिक और महारोमांचक फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े कवरेज में घड़ी की सुइयां अपनी चाल चल रही हैं और दुनिया की चार सबसे बेहतरीन टीमें फुटबॉल के सबसे बड़े ताज के लिए आमने सामने हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं पहले महामुकाबले पर, जहां एक तरफ है एम्बापे की अगुवाई वाली बेदाग फ्रांस तो दूसरी तरफ है युवा सनसनी लामिन यामाल के जोश से भरी स्पैनिश ब्रिगेड। फुटबॉल के यूरोपीय क्लैश में कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या एम्बापे का तूफान स्पेन के मजबूत डिफेंस को भेद पाएगा? यह मैच खेला जाएगा अमेरिका के टेक्सास में स्थित शानदार डालास स्टेडियम में। और अब बात करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की, जो फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी में से एक है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की टक्कर होगी जुझारू इंग्लैंड से। लियोनेल मेसी के जादुई पास या हैरी केन की सटीक स्ट्राइक, किसका जलवा चलेगा? यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा जॉर्जिया के अटलांटा स्टेडियम में, जहां फैंस का उत्साह देखने लायक होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंची चारों टीमें फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना और इंग्लैंड के पास ऐसे मैच विनर खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर पासा पलट सकते हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक के प्रदर्शन और उनके प्रभाव के आधार पर प्रमुख खिलाड़ियों की सीधी तुलना की जा सकती है। एम्बापे ने फॉरवर्ड और स्ट्राइकर की भूमिका निभाते हुए 8 गोल किए हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत है बेहतरीन गति, खतरनाक ड्रिबलिंग और फ्रांस के अटैक के मुख्य लीडर हैं। वहीं मेसी की बात करें तो उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में अभी तक 8 गोल कर लिए हैं। प्लेमेकर हैं, फॉरवर्ड हैं और जादुई पासिंग, गेम कंट्रोल और अनुभवी कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ जूड बेलिंगहम मिडफील्डर हैं इंग्लैंड के, 6 गोल कर चुके हैं। बॉक्स टू बॉक्स रन, मिडफील्ड पर नियंत्रण और महत्वपूर्ण मौकों पर गोल उन्होंने अपनी टीम के लिए किए हैं। इंग्लैंड के ही हैरी केन मुख्य स्ट्राइकर हैं, 6 गोल वो अभी तक अपनी टीम के लिए कर चुके हैं। क्लिनिकल फिनिशिंग और पेनल्टी बॉक्स में बेहतरीन पोजीशनिंग, ये उनकी खासियत है। लामिन यामाल विंगर हैं, अटैकर हैं, अपनी टीम स्पेन के लिए उन्होंने क्रिएटिविटी के साथ कई सारे अद्भुत गोल कराने में उन्होंने मदद की है। छोटी उम्र में अद्भुत स्किल, विंग से अटैक और फ्रांस के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। पूरा विश्व कप अब एकदम रोमांचक मोड़ पर है। ये सेमीफाइनल तय करेंगे कि 20 जुलाई को न्यूयॉर्क में होने वाले फाइनल महामुकाबले में कौन सी दो टीमें इतिहास रचने के लिए उतरेंगी। इस पर हमने बात की जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी और कोच विक्रांत शर्मा से। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: इतना मुश्किल सवाल आपने मुझसे पूछा है, फिर भी आज के मैच की बात करते हैं। आज है लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीम फ्रांस और 2010 की चैंपियन स्पेन। बड़ा मुश्किल है ये इसका जवाब देना कि कौन जीतेगा, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा रिकॉर्ड देखेंगे तो मेरे हिसाब से फ्रांस का पलड़ा थोड़ा भारी है आज के मैच में, क्योंकि अगर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे अभी तक वो 10 गोल डाल चुके हैं लीग स्टेज के अंदर, उन्होंने 10 गोल मारे हैं। उसके बाद वो लोग राउंड ऑफ 32 भी आराम से निकाल के ले गए, राउंड ऑफ 16 में भी वो लोगों ने पुर्तगाल को मारा, और जहाँ तक मेरे को लगता है फ्रांस का पलड़ा आज के मैच में भारी रहेगा।
0: अगर सर खेलने की शैली की बात करें तो कहीं ना कहीं फ्रांस और स्पेन के बीच जो आज मुकाबला है वो शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन मुकाबला हो सकता है।
1: बिल्कुल होगा, क्योंकि स्पेन अपने जो आप पहले भी सुनते आते हैं कि उनका स्टाइल ऑफ प्ले टिकटाका फुटबॉल है उनका, वो लोग बॉल को रख के खेलना पसंद करते हैं, और अगर आप देखा जाए

0: टूर्नामेंट में अभी तक एक ही गोल कंसीड किया है और फ्रांस की टीम लीग स्टेज में 10 गोल मार चुकी है। तो जहां तक मेरे को लगता है ये उनकी डिफेंस और फ्रांस की अटैक लाइन के बीच में अच्छा संघर्ष रहेगा।
1: इसके अलावा सर आज का जो मुकाबला है उसमें खास तौर से निगाहें जैसे एम्बापे उनके लिए लगातार गोल करते आ रहे हैं फ्रांस के लिए, यदि एम्बापे को रोक लिया जाए तो क्या फ्रांस के पास और खिलाड़ी ऐसे हैं जो गोल कर सके?
0: फ्रांस की टीम में आप किस किस को रोकोगे? आप एम्बापे को मेरे को नहीं लगता कि उसको रोक पाओगे। अगर उसको रोक भी लिया तो आपके पास डेम्बेले है जो कि ऑलरेडी एक हैट्रिक मार चुके हैं इसके अंदर, उसके बाद आपके पास विंग में ओलिस है। मतलब आप जहां भी देखोगे उनके पास बहुत ज्यादा फायर पावर है, किस किस को रोक पाएंगे? मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि स्पेन इतने सारे प्लेयरों को मैच में रोक पाएंगी, बहुत डिफिकल्ट है।
1: इसके अलावा सर जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होना है अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, क्या लगता है सर इंग्लैंड को अब कहीं ना कहीं सता रहा है कि बहुत साल हो गए वर्ल्ड कप नहीं जीता?
0: देखो जहाँ तक पिछले अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो इंग्लैंड हमेशा मतलब 1966 के बाद आज तक जीत नहीं पाई है। कोशिश वो हर साल करते हैं, हर वर्ल्ड कप में वो कोशिश करते हैं लेकिन तमाम वो चौक कर जाते हैं। लेकिन यहाँ तक वो पहुंचे हैं अपनी अच्छी मेहनत से पहुंचे हैं, जैसे कि आपने पिछले मैचेस में देखा कि वो लोग हारते हारते मैच भी वो लोग निकाल के लेके चले गए। और सेम ही अर्जेंटीना का भी है, अर्जेंटीना का जहाँ पे मेरे को लगता है कि उनका डिफेंस थोड़ा सा वीक रहेगा और स्ट्राइक फोर्स में अगर आप मेसी को हटा दोगे तो टीम बड़ी हल्की लगती है, बड़ी एवरेज लगती है। और उसके बाद अर्जेंटीना की टीम भी देखो दो मैच वो लोग एक्स्ट्रा टाइम में निकाल के लेके आए हैं, तो वो मैच भी बड़ा टफ रहेगा इंग्लैंड और अर्जेंटीना। और पुरानी राइवलरी है 86 से चलती आ रही है तो बहुत टफ मैच रहेंगे दोनों।
1: तो कुल मिलाकर सर अगर बात करें दो फाइनलिस्ट, आपकी निगाह से एक खेल की शैली, रणनीति और खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपना खेल दिखाया है अभी तक, उसके आधार पर कौन सी दो टीमें आपको लगता है कि बेहतरीन है और फाइनल में होनी चाहिए?
0: मेरे हिसाब से तो फ्रांस एक आएगी, और क्योंकि मैं हमेशा अर्जेंटीना को सपोर्ट करता हूँ, मैं तो चाहूंगा अर्जेंटीना आए लेकिन अर्जेंटीना का आना मुश्किल लग रहा है, तो मेरे हिसाब से फ्रांस और इंग्लैंड।
1: फुटबॉल के बाद अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम अब इंग्लैंड के सामने अपना मुकाबला खेल रही है। हालांकि T20 मुकाबले में हम अच्छा नहीं खेले थे और बहुत ही खराब तरीके से भारतीय टीम T20 सीरीज हार गई, एक भी मुकाबला हम जीत नहीं पाए थे। 5 T20 मुकाबलों की सीरीज थी और हम उसमें एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए थे, 4 हार और 1 ड्रॉ। वर्षा बाधित मुकाबले में 1 ड्रॉ हुआ था, लेकिन उसके बाद अब एक दिवसीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है और बेहतरीन शुरुआत हम कह सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, क्योंकि इंग्लैंड को आज जब इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत साबित हुआ। क्यों गलत साबित हुआ विजेता? क्योंकि इंग्लैंड को लगातार झटके लगते रहे। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह और गुरनूर बरार ने गेंदबाजी की शुरुआत की और जैकब बैथेल को केवल 14 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर गुरनूर बरार ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद जो रूट हालांकि बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन बैन डकेट को भी गुरनूर बरार ने 43 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। और उसके बाद हेनरी ब्रूक को जसप्रीत बुमराह ने केवल 1 रन पे आउट किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने जॉस बटलर को 5 रन पर आउट कर दिया। सैम करन से उम्मीद थी कि शायद वो कुछ अच्छी बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको 0 के स्कोर पर आउट कर दिया। और उसके बाद केएल राहुल के हाथों कैच होने के बाद विल जैक्स भी पवेलियन जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति इस समय विजेता ये है कि 122 रन हो चुके हैं, 6 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के और अभी केवल 26 ओवर हैं का खेल हुआ है, 24 ओवर का खेल बाकी है। और जिस तरह से अभी तक इंग्लैंड की बल्लेबाजी हुई है तो लगता ये है कि आज का ये मुकाबला बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी इंग्लैंड की टीम और भारत के लिए शायद आसान होगा इस मुकाबले को जीतना, क्योंकि यदि बड़ा स्कोर नहीं बनेगा तो भारतीय टीम के लिए आसानी से इस मुकाबले को जीतने की राह बनेगी। लेकिन क्रिकेट है कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब प्लेइंग 11 में कई सारे हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो आ चुके हैं,
2: उनके नाम जुड़ चुके हैं,
1: और वो हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर भी टीम में है लेकिन यहाँ पर वो कप्तान नहीं है, कप्तान शुभमन गिल हैं, केएल राहुल विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। तो कहीं ना कहीं जैसे ही फॉर्मेट बदला सूरत हाल भी बदल गए।
2: बिल्कुल, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आज तो परचम लहराई जाए हमारे देश का,
1: क्योंकि हमारे जो ये खिलाड़ी हैं ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बस एक कभी कभी वो समय आता है जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक दिवसीय क्रिकेट में बहुत अच्छी क्रिकेट भारतीय टीम खेलती है और उसी का कहीं ना कहीं अभी तक प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों ने किया है, जो इंग्लैंड को 26 ओवर्स के बाद 122 रन पर 6 खिलाड़ी उनके आउट कर चुके हैं। अब क्रिकेट की बातों को देते हैं विराम और बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, और कॉमनवेल्थ गेम्स में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और हम लगातार अपने श्रोताओं को कॉमनवेल्थ गेम्स में होने वाले अलग अलग खेलों के बारे में बताते हैं, और आज हमारी सहयोगी विजेता ने खास तौर से आपके लिए रेडियो रिपोर्ट तैयार की है वेट लिफ्टिंग की, आइए सुनते हैं।
2: दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक फिर लौट आया है, जहां करोड़ों लोगों की निगाहें होंगी अपने अपने देश के खिलाड़ियों पर। सवाल सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि देश का मान बढ़ाने का है। कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां संस्करण स्कॉटलैंड के ऐतिहासिक शहर ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी ताकत और हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इस संस्करण में लगभग 10 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें एथलेटिक्स, तैराकी, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, वेटलिफ्टिंग, जूडो और अन्य प्रमुख प्रतियोगिताएं होंगी। भारत भी एक मजबूत दल के साथ इन खेलों में उतर रहा है और कई खेलों में पदक जीतने की उम्मीद है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 केवल खेलों का आयोजन नहीं बल्कि खेल भावना, मित्रता और देशों के बीच एकता का उत्सव भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भारत अपने पदकों की झोली में कितनी नई सफलताएं जोड़ पाता है। लेकिन भारत की नजर जिस खेल पर सबसे ज्यादा टिकी होगी वो है वेट लिफ्टिंग, और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम वेट लिफ्टिंग के बारे में ही विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये वही खेल है जिसने हर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली पदकों से भरी है। लोहे उठाने वाले ये खिलाड़ी जब मंच पर उतरते हैं तो सिर्फ वजन नहीं उठाते बल्कि अपने कंधों पर पूरे देश की उम्मीदों का भार भी उठाते हैं। हर लिफ्ट के साथ उनकी मांसपेशियां ही नहीं, उनका हौसला भी अपनी नई ऊंचाइयां छूता है। पसीने की हर बूंद वर्षों की तपस्या की कहानी कहती है। जब बारबेल सिर के ऊपर उठती है तो उसके साथ करोड़ों भारतीयों का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। वेटलिफ्टिंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास की परीक्षा है। यहाँ जीत उसी की होती है जो दर्द से दोस्ती कर ले और हार से सीख ले और हर बार पहले से ऊंचा उठने का हौसला रखे। भारतीय वेटलिफ्टर्स ने बार बार साबित किया है कि जब इरादे मजबूत हों तो दुनिया का सबसे भारी वजन भी हल्का पड़ जाता है। याद कीजिए जब कर्णम मल्लेश्वरी ने इतिहास रचा था, जब कुंजा रानी देवी ने देश का मान बढ़ाया था, और फिर आई मीराबाई चानू जिन्होंने अपनी मुस्कान और अपनी ताकत से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। अब एक बार फिर वही कहानी नए अध्याय के साथ लिखे जाने को तैयार है। भारत में अगर वेटलिफ्टिंग के इतिहास की बात करें तो 1935 में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना की गई थी। 1936 के

0: डिजी लॉकर जो मूल रूप से नागरिकों के दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, वह अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। पारंपरिक व्यवस्था में हर सरकारी दस्तावेज प्रमाण पत्र, मार्कशीट या पहचान पत्र की भौतिक प्रति बनवाने और उसे कई बार फोटोकॉपी कराने के लिए बड़ी मात्रा में कागज का उपयोग होता था। डिजी लॉकर के आने से यह जरूरत काफी हद तक समाप्त हो गई है, क्योंकि अब नागरिक अपने दस्तावेजों को डिजिटल रूप में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे कागज के उत्पादन में उपयोग होने वाले पेड़ों की कटाई कम होती है, जो कि सीधे तौर पर वनों और जैव विविधता की रक्षा में सहायक है, जिसका सीधा संबंध हमारे पर्यावरण और उसके संरक्षण से जुड़ता है। इसके अतिरिक्त कागज बनाने की प्रक्रिया में भारी मात्रा में पानी, ऊर्जा और रसायनों का उपयोग होता है, जिससे प्रदूषण फैलता है। डिजिटल दस्तावेजीकरण से इन संसाधनों की बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन भी घटता है। इन सभी के परिणाम स्वरूप हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास की प्रकृति सुरक्षित और संरक्षित हो पाती है। दफ्तरों में फाइलों के भंडारण और परिवहन में लगने वाला ईंधन भी कम होता है। इस प्रकार डिजी लॉकर न केवल प्रशासनिक सुविधा प्रदान करता है, आमजन को डिजिटल स्वरूप में अपने दस्तावेजों को संरक्षित और सहेज कर रखने की एक महत्वपूर्ण तकनीकी सुविधा मुहैया करता है, बल्कि यह एक हरित और टिकाऊ भविष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम अक्सर डिजी लॉकर का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इसके प्रयोग से जुड़ी चुनौतियों से अक्सर अनजान रहते हैं। दरअसल डिजी लॉकर के व्यापक उपयोग की राह में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल साक्षरता की कमी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग स्मार्टफोन या इंटरनेट का उपयोग करने में सहज नहीं होते हैं, जिससे वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते। इसके अलावा कई क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर या अनुपलब्ध होती है, जिससे डिजी लॉकर तक पहुंच सीमित हो जाती है। स्मार्टफोन और डेटा की उच्च लागत भी गरीब और वंचित वर्गों के लिए एक बड़ी बाधा है। आधार से जुड़ी प्रक्रिया के कारण जिनके पास वैध आधार कार्ड नहीं है या जिनकी जानकारी में त्रुटि है, वे भी इस सेवा से वंचित रह जाते हैं। इन सभी बाधाओं और समस्याओं को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान, बेहतर अवसंरचना और डिजी लॉकर से जुड़ी ही तकनीकी सुविधा के सरल इंटरफेस की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों को डिजी लॉकर के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC, पंचायत भवन, विद्यालय और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी लोगों को डिजिटल दस्तावेजों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक किया जा सकता है। साथ ही साइबर सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड, OTP की गोपनीयता और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में भी नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास के लिए डिजिटल दस्तावेजों को अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं जैसे कि आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI, जनधन खाते, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और सुरक्षित डिजिटल पहचान प्रणालियों के उपयोग से दस्तावेजों की सुरक्षा, सत्यापन और उपयोगिता को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिजिटल तकनीक और डिजी लॉकर केवल दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का एक डिजिटल समाधान और डिजिटल माध्यम नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत में सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल समावेशन और समावेशी विकास का एक प्रभावी उपकरण भी है। इससे ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक सरल और सुरक्षित पहुंच प्राप्त होती है। यदि डिजिटल अवसंरचना को और मजबूत किया जाए, इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाया जाए और डिजिटल साक्षरता को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जाए, तो डिजी लॉकर ग्रामीण विकास और आजीविका को सशक्त बनाने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा में एक ऐसा कदम है जो ग्रामीण नागरिकों को सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में निरंतर योगदान दे रहा है।
1: तो साथियों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी। और सरिता बहन, जो डॉक्टर गोरे बता रहे थे कि इस डिजिटाइजेशन की वजह से हमारे पर्यावरण को बहुत लाभ होता है और पारदर्शिता बनी रहती है, तो क्यों ना हम भी इसे अपने जीवन में अपनाएं और जो सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई हैं उनका हम सदुपयोग करें।
2: बिल्कुल, और ऐसे ही अगर रहा तो सचमुच पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और जो हमारी धरती है ना उसकी शोभा बढ़ेगी। तो आइए इसी पर हम एक लोकगीत लेते हैं और सुनवाते हैं अपने भाई बहनों को, हरेंद्र नागर से ये उपदेश।
3: भई धरती की शोभा सृष्टि

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे हरेंद्र नागर को धरती की शोभा सृष्टि। और साथियों, वर्षा का समय चल रहा है, बारिश चल रही है और जगह जगह पानी की वजह से बड़ी ही जनजीवन को परेशानी हो रही है। लेकिन ये परेशानी एक जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो एक अवसर होता है, उसकी ओर भी इशारा करती है।
1: जी हाँ, और कहते हैं ना वीरेन भाई कि देखा जाए तो बारिश हर साल होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश का कितना पानी हमारे किसी काम में आता है? अधिकांश आप देखो वीरेन भाई, पानी बहकर नालियों और नदियों में चला जाता है
0: जी।
1: फिर कुछ महीने बाद हम कहते हैं अरे पानी की बहुत कमी है। तो भाई हमें, हमारे लिए जो वीरेन भाई है ना, बारिश की हर बूंद अमूल्य है। यदि आप इसे सहेज ले तो ये पानी गर्मियों में हमारी प्यास तो बुझा सकते हैं, साथ ही खेतों को सींच सकते हैं और हमारे गाँव के कुएं हैंडपंप को फिर से भर सकते हैं।
0: जी सरिता बहन, जल ही जीवन है और अब तो ये कहें कि जल ही धन है तो कोई अतिशोक्ति नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और हम जहां भी हों, जहां भी वर्षा के बल जल से बाढ़ आ रही हो या कोई और व्यवस्था अनुकूल ना हो रही हो, तो उस समय हमें उसका सदुपयोग करके उसे संचयित करने के प्रयास करने चाहिए। इससे क्या होगा कि भूजल में सुधार होगा, पानी की बचत होगी और ये जो है पर्यावरण के अनुकूल भी है।
1: जी, आप घर के छत से पाइप के जरिए पानी टंकी में जमा किया जा सकता है, सोखता गड्ढे के माध्यम से जमीन में उतारा जा सकता है, खेतों में मेड़बंदी तालाब और छोटे चैक डैम बनाकर भी पानी को रोका जा सकता है।
0: जी,
1: तो भाई इसके बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ हमें इसका उपयोग करना आना चाहिए।
0: जी, और सरिता बहन, जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं वो नदियों के किनारे बसी हैं, क्योंकि वहाँ जल अधिक होता है, पर्याप्त होता है, समुचित होता है, और साथ ही नदियों के पास जो जल स्तर होता है थोड़ी दूर तक, 2-4 किलोमीटर तक, वो अच्छा होता है।
1: तो भाई हमें यही संकल्प लेना चाहिए कि बारिश की हर बूंद बचाएंगे, जल संकट को दूर भगाएंगे। और भाई बात अगर जल, अमूल्य जल की बात हो रही है, तो क्यों ना इस पे हम जयप्रकाश शर्मा से सुन ले कि जल कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

0: और साथियों, अब ग्राम संसार कार्यक्रम का समय यहीं पर संपन्न हो रहा है, तो सभी सुनने वालों को राम राम, राम, राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर, संयोजक कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही तथा व्यापार जारी रखने का आह्वान किया।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की

0: गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसको तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य के कृषि मंत्री दूत कुमार मंडल, पंचायत मंत्री दिलीप घोष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 47वें ओवर में 8 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को
1: राम राम।
0: जी हाँ साथियों, समय चाहे कोई भी हो, हमें आगे ही चलना होता है और किसान को तो हर दिन कार्य करना है, खेत के चक्कर लगाने हैं, पशुओं की सेवा करनी है और जितने भी काम उन सब से जुड़े हुए हैं उन सब का ध्यान भी रखना है और काम भी करना है।
1: जी हाँ, कहते हैं ना किसान हमारे अन्नदाता है भाई और इनका काफी मेहनत का काम होता है। लेकिन वीरेन भाई, इस वक्त जो हमारे किसान भाई है ना अपने खेतों से घर लौट आए हैं और हमें जरूर सुन रहे हैं।
0: जी
1: तो भाई, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो क्यों ना हम उन्हें काम की बात यानी कोई अच्छी जानकारी दे दे जो उनके लिए लाभदायक हो।
0: जी हम तो यही कोशिश करते हैं कि जन कल्याण और किसान कल्याण की जो जितनी भी जानकारी है वो उन तक पहुंचती रहनी चाहिए। तो आज फिर हम अपना ये काम करते हैं, आज फूलों से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आए हैं हम सरिता बहन अपने किसान बहन भाइयों के लिए। बरसात के मौसम में फूलों में समसामयिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके विषय में बता रहे हैं डॉक्टर देवांश सिंह।
1: तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतु में फूलों के लिए समय सामयिक कौन सी शस्य क्रिया हमें करनी चाहिए। पहले हम जान लेते हैं कि इस मौसम में कौन से ऐसे फूल हैं जिनमें समय सामयिक शस्य क्रियाओं की जरूरत पड़ती है, जैसे कि गेंदे का फूल, गुलदाउदी, गुलाब और कुछ मौसमी फूलों में आते हैं पर्टुला का, गलाडिया, जीनिया या फिर सदाबहार। अगर हम गेंदे की खेती के बारे में जाने तो गेंदा जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लूज फ्लावर क्रॉप है जिसे हम लोग खुले फूल के वर्ग में रखते हैं। खुले फूलों में इसका इस्तेमाल माला बनाने, पंखुड़ियों से इसकी रंगोली बनाने या भगवान को चढ़ावा चढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। गेंदे की किस्मों को हम लोग दो वर्ग में बांटते हैं, जैसे कि अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा वह होता है जिसके फूल का आकार बड़ा होता है और इसकी जो नर्सरी लगती है वो लगती है हमारे सितंबर के महीने में और इसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है अक्टूबर में। वहीं फ्रेंच गेंदा जो होता है उसकी जो नर्सरी लगती है वो जुलाई के महीने में लगती है, जो कि हम मानते हैं कि अधिकतर किसान भाइयों ने जुलाई के पहले ही हफ्ते में इसकी नर्सरी तैयार कर ली होगी। और जिन्होंने अभी तक नहीं करी होगी उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि ये काफी अच्छा समय है इसकी नर्सरी लगाने का। फ्रेंच गेंदा जो होता है वो छोटे आकार में होता है और इसमें जो फूल आते हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं, जिससे कि बेच करके हम लोग काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। हमारे सर्दी में बिकने वाले गेंदों से 3 गुना ज्यादा कमाई हम लोग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये फूल हमारे जितने भी पर्व पड़ते हैं, उत्सव पड़ते हैं, जैसे दिवाली या छठ, इसमें काफी काम आता है। गेंदे की नर्सरी तैयार करने के लिए हमें कुछ बातों का जो ख्याल रखना है, क्योंकि इसकी नर्सरी हम लोग जुलाई के महीने में जो कि वर्षा ऋतु में पड़ता है उसमें कर रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ खास ख्याल रखना है। जैसे कि इसके कैरी की जो हाइट है वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए और इसमें कैरी की चौड़ाई है वो 75 से 80 सेंटीमीटर रहती है। इसकी लंबाई हम लोग 3 से 4 मीटर तक रख सकते हैं। एक कैरी से दूसरे कैरी के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें एक खास ख्याल रखना चाहिए कि जल निकास का हमें काफी अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो जमा ना हो। कैरियों के ऊपर एक पतले तार का हम लोग टनल टाइप का संरचना भी बना सकते हैं, जिससे हम लोग बारिश पड़ते वक्त ऊपर प्लास्टिक डाल सकते हैं और हमारे पौध को बारिश के पानी से या फिर जल भराव से बचा सकते हैं। नर्सरी की कैरी तैयार करने से पहले गर्मी के महीने में उस मिट्टी की हम लोग 2 से 3 बार जुताई कर देते हैं, जिससे कि धूप की किरण या फिर अधिक तापमान से फंगस है और कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। हम लोग अब इसके सीड प्रिपरेशन की बात करते हैं। हमें जो इसके बीज तैयार करने हैं उन्हें कवकनाशी में इसे मिला करके हमें तैयार करना है। कवकनाशी जैसे कि मैंकोजेब या फिर बेविस्टीन, मैंकोजेब को हम लोग M45 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी आती है जो जमीन से निचले तने को गला देती है और उससे जो हमारी पौध है वो मर जाती है। जब ये तैयार हो जाता है तो हमें इसको रो टू रो, जो कि हम कहेंगे पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और बीच से बीच की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो इसका गहराई है वो लगभग आधा से पौन या अधिकतम 1 सेंटीमीटर रखनी है। इसके

0: बाद हम लोगों को इसमें व्हाइट सैंड, जो कि हमारा जमुना जी की सफेद मिट्टी होती है, वो साथ में गाय की सड़ी हुई खाद और मिट्टी को मिला करके, जिसमें बीज डाला गया है उसी के ऊपर हमें रख देना है। और ऊपर से हम लोग सूखी हुई पुआल या फिर घास रख सकते हैं, इससे जो तापमान है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद हम लोगों को पानी की सिंचाई करनी है, वो हम लोग फुहारे द्वारा करेंगे। और जो हम लोग पानी प्रदान करेंगे वो केवल इतना होना चाहिए कि वो बीज तक नमी पहुंचा दे। पुआल डालने के लगभग 5 से 7 दिन बाद जो हमारा बीज है वो अंकुरित हो जाएगा, और उसके बाद हमें पुआल को हटा देना है। अगर हम लोग समय से पुआल नहीं हटाएंगे तो जो हमारी पौध तैयार होगी वो टेढ़ी मेढ़ी तैयार हो जाएगी। और उससे ये होगा कि जब हम लोग पौधे को रोपारण करेंगे तब वो पौध मर जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है पोर्ट्रेस का। हम लोग पोर्ट्रेस में भी हमारी नर्सरी है वो तैयार कर सकते हैं। पोर्ट्रेस में नर्सरी तैयार करने के लिए हम लोग एक भाग कोकोपीट का, एक भाग वर्मी कंपोस्ट का और एक भाग परलाइट का लेते हैं। पोर्ट्रेस में पौध तैयार करने की सबसे खास बात यह है कि जो हमारी जड़ है वो काफी अच्छे से तैयार होती है, और इसको रोपारण करते वक्त जो इसका मृत्यु दर है वो काफी कम रहता है। तो इस तरह से हमारी नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। रोपाई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 सेंटीमीटर तक रखते हैं और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। रोपाई के 15 दिन बाद इसमें एक काफी अहम प्रक्रिया करते हैं जिसे हम शीर्ष नोचन कहते हैं, जिसमें हम जो तने के ऊपर से 1 से 1.5 सेंटीमीटर का भाग तोड़ देते हैं ताकि उनकी पंक्तियों से शाखाएं निकलना शुरू हो जाएं और इससे अधिक फूलों की पैदावार मिले। सघन पौधों में अनुबन ये देखा गया है कि केवल एक बार शीर्ष नोचन काफी होता है, परंतु अगर हम लोगों को एक और बार शीर्ष नोचन करना है तो पहले शीर्ष नोचन के 15 से 20 दिन बाद हम लोग दूसरा शीर्ष नोचन जो नई आई टहनियां हैं उनसे कर सकते हैं। इससे जो पौधे का आकार है वो और भी बड़ा मिलेगा। नर्सरी में बीज डालने से और ट्रांसप्लांटिंग के बाद लगभग 65 से 70 दिन में हमें पुष्पांत मिलना शुरू हो जाता है, और लगभग 2 महीने तक हमें इससे पुष्प मिलते रहते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, इस वक्त जो हम लोग कैरी डालेंगे उसकी हम लोगों को पैदावार मिलेगी वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में मिलेगी, और सर्दियों के मौसम से 3 गुना हमें ज्यादा लाभदायक रेट मिलेगा। मार्केट में लगभग 90 से 100 रुपए किलो मिल जाएगा। अगर बात करें हम लोग इसमें कीड़े और मकोड़ों की, तो इसमें एफिड और कैटरपिलर को कभी कभार देखा जाता है, जिससे निजात पाने के लिए हम लोग मेलाथियन 1.5 ml का छिड़काव कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गुलदाउदी की। गुलदाउदी भी एक काफी महत्वपूर्ण कट फ्लावर क्रॉप है, साथ ही में ये काफी महत्वपूर्ण पॉटेड प्लांट क्रॉप भी है। इसकी खेती किसान भाई जो व्यावसायिक रूप से करते हैं वो कट फ्लावर के लिए इसे खुले मैदान में भी लगाते हैं या फिर इसे संरक्षित संरचना के अंदर भी करते हैं, जैसे कि पॉली हाउस वगैरह। इस समय अधिकतम किसान भाई इसकी कटिंग लगा चुके होंगे, वो देख रहे होंगे कि इसमें रूटिंग आ गई होगी, वो पॉली हाउस के अंदर या फिर बाहर ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। जो किसान भाई कलम सही से या फिर अभी तक नहीं लगाए हैं वो इसकी कलम काट लें, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर हो और ऊपर की तरफ से 3 से 4 पत्तियां मिल जाएं। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम लोग कटिंग लगा रहे हैं वो सॉफ्ट वुड कटिंग होनी चाहिए। जो हार्ड वुड कटिंग होती है उससे जड़ नहीं निकल पाती हैं, इसलिए हमें सॉफ्ट वुड कटिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। कटिंग को काटने के बाद 1000 ppm IBA का सॉल्यूशन, 1000 ppm का मतलब होता है कि 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम IBA को घोल करके उसका एक घोल बनाना। तो 1000 ppm IBA के मिश्रण के अंदर हमें 7 से 8 मिनट तक लगभग 1 सेंटीमीटर का निचला हिस्सा डुबा के रखना है। इससे जो जड़ का विकास है वो काफी जल्दी और काफी अच्छा होता है। इसको लगाने के लिए पोर्ट्रे में हम लोगों को एक भाग वर्मिंग कंपोस्ट, एक भाग परलाइट और एक भाग कोकोपीट है उसको लेना होता है। पर पोर्ट्रे है उसे एक छांव के अंदर में रखना है, तो इसके लिए या तो आप पॉली हाउस में रख लें इसे, या फिर आप एक छोटा सा हरे जाली का नेट हाउस बना लें उसके अंदर रख लें। गेंदे की नर्सरी तैयार करने में और गुलदाउदी की नर्सरी तैयार करने में जो अंतर है वो ये है कि हमें इसमें यमुना जी का सफेद रेता 15 सेंटीमीटर की परत लगानी होती है। इससे जो हमारी ज्यादा नमी है वो नीचे चली जाती है, वो लीच हो जाती है और जो हमारा तना है वो सड़ने से बच सकता है। इसमें एक और चीज देखी गई है कि अगर रोपण से एक महीना पहले जो हमारा मदर प्लांट है उसे जमीन की सतह से काट दिया जाए तो इसमें सकर्स निकल आते हैं, जिससे कि हम लोग सकर द्वारा भी इसको रोपित कर सकते हैं। दोनों विधियों में, चाहे आप पोर्ट्रेस लगाएं या फिर आप हमारे खेत में डायरेक्ट नर्सरी तैयार करके लगाएं, दोनों में देखा गया है कि 30 से 35 दिन के अंदर जो हमारी जड़ है वो बन करके तैयार हो जाती है। और जो इसमें स्पेसिंग रखते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी है 4 सेंटीमीटर के आसपास, और जो हमारी कलम से कलम की दूरी होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर रहती है। परंतु एक काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि पोर्ट्रे द्वारा तैयार की गई पौध हमें नर्सरी बेड, जो जमीन से हम नर्सरी तैयार करते हैं उससे तैयार की गई पौध से महंगी पड़ती है। परंतु ये भी सच है कि जो हमें पोर्ट्रे द्वारा पौध मिलती है वो काफी अच्छी जड़ों की क्वालिटी मिलती है उसमें हमें। अब हम बात करते हैं गुलाब की। गुलाब में इस वक्त ध्यान देने की बात यह है कि बारिश का वक्त है, तो जो इस वक्त गुलाब की खेती कर रहे हैं, चाहे वो लूज फ्लावर के लिए हो या तेल निकालने के लिए जो रोजा डेमेसिना की खेती कर रहे हैं, दोनों ही के लिए ये बात है कि अभी हमें खेत के अंदर खरपतवार रहित रखने के लिए ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर गर्मी बढ़ती है तो उससे इस वक्त ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और खरपतवार के कारण फंगस लगने का काफी संभावना बढ़ जाता है। बरसात के दिनों में जल प्रभाव ना हो इसका हमें काफी ध्यान देना होगा, और इस वक्त में हमें गुलाब में कोई भी कटिंग, बडिंग या प्रूनिंग नहीं करनी है। जब अक्टूबर का पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता जहां हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि अब ठंड आने लगी है, तब हम लोग इसमें प्रूनिंग का जो ऑपरेशन है वो शुरू कर सकते हैं। कभी कभी बरसात के दिनों में इसमें लाल मकड़ी, जिसे हम माइट कहते हैं, उसका प्रकोप देखने को मिलता है। इससे हमें शुरुआती रूप में ही नियंत्रण है वो पाने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर इसका प्रकोप बढ़ जाता है और ये पूरे खेत में फैल जाता है तो फिर इसे नियंत्रित करना काफी मुश्किल होता है। इसकी पहचान ये होती है कि ये पत्ती के निचले स्तर पर वो अपना काबू पाती है और अटैक करती है। ये जो पत्ती का क्लोरोफिल होता है वो चूस जाती है और जो इसके द्वारा प्रभावित पत्तियां होती हैं वो भूरे कलर की हो जाती हैं और उसमें चित्तियां आ जाती हैं। इससे बचने के लिए ओमाइट या फिर डाइकोफॉल का इस्तेमाल करते हैं। ओमाइट हम लोग 0.3 ml पर लीटर पानी में, या फिर डाइकोफॉल अगर ले रहे हैं तो वो 1 ml पर लीटर पानी में डाल करके हम लोग छिड़काव करते हैं। जो इसका छिड़काव हम लोग करते हैं उसकी जो गन होती है वो भी अलग तरह की होती है। उसका छिड़काव हम लोग नीचे से करते हैं ताकि जो पत्तियों के नीचे में संक्रमण है उस पे छिड़काव अच्छे से हो सके। पहला छिड़काव करने के 2 हफ्ते बाद हम लोग इसका फिर से छिड़काव करते हैं। जब हम लोग इस वक्त कटिंग या प्रूनिंग अगर कर रहे होते हैं तो 2 बातें ध्यान रखने की ये होती हैं कि जो हम लोग कट लगाएं वो सीधा कट ना हो करके वो तिरछा कट होना चाहिए, जिससे ऊपर पानी रुके नहीं, वो रिस जाए। और जब हम लोग कट लगाते हैं तो उसमें हम लोगों को फंगीसाइड जैसे कि बेवेस्टीन या फिर मैंकोजेब, उसका हमें एक लेप लगा देना होता है।
1: बरसात के मौसम में फूलों पे समसामयिक क्रियाएं, इस पे जानकारी दे रहे थे देवान सिंह, और ये बहुत ही खूबसूरत जानकारी थी हमारे जो किसान भाई बहन है उनके लिए।
2: जी, फूल खूबसूरत ही होते हैं और फूलों का जो महत्व है अभी देवान सिंह ने जो बताया तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आम जन से लेके देवताओं तक फूलों को पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और फूल जितने भी प्रकार के होते हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं, और कृषि में तो अब इनका नगदी फसल के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन बढ़ चुका है।
1: जी हाँ, और हमारे किसान भाई लाभ भी उठा रहे हैं। और जैसा कि मैंने वीरेन भाई कहा था कि ये शाम का वक्त है, हमारे किसान भाई घर लौटे हैं और हमें सुन रहे हैं, तो इससे बातचीत का उनको पूरा लाभ मिला होगा। और अब हम क्यों ना उनका मनोरंजन भी करा दे, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद मनोरंजन तो होना ही चाहिए।
2: जी, तो सुनवाते हैं आपको ओमवीर आर्य को।
0: नमस्कार किसान।

0: साथियों, जीवन को समझने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम उसके गूढ़ रहस्यों को जानें और उनसे कुछ सीखें, यही बता रहे थे ओमवीर आर्य अपने इस उपदेश में।
1: और भाई वीरेन भाई, हम बारिश की बात कर रहे हैं और बरसात का मौसम भी है, कहीं बहुत बारिश हो रही है, कहीं कम हो रही है। तो जो बरसात का मौसम है ना, जहाँ हरियाली और खुशहाली लेकर आता है, वही कई तरह के प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ा देता है। तो ऐसे में हमें थोड़ी सावधानी रखना चाहिए ताकि हम और हमारे परिवार जो है सुरक्षित रह सके
0: जी।
1: और ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए
0: जी।
1: कई बार बारिश के मौसम में खेती में कार्य करते समय

0: इनका जब उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं ना, तो उसपे आप जरूर सावधानी रखें, गीले हाथों से बिजली के उपकरण ना छुएं और खराब तार जो है ना उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें
1: जी। तो ये सब सुरक्षा उपकरण आप सावधानी से इस्तेमाल करेंगे और अपने पशुओं का जो आश्रय है उसको भी साफ सुथरा और इन दुर्घटनाओं से बचाव करने का सक्षम उपाय करते हुए देखते रहें उसको, और साथ ही चारे का प्रबंधन जो है सही करें, बारिश के समय गंदा पानी हो जाता है सब जगह का, खुला पानी ना पिलाएं, पशुओं को भी साफ और स्वच्छ पानी ही पिलाएं।
0: और कहते हैं ना कि जब बारिश का मौसम आता है तो कई बार होता है आंधी तूफान चलती है और हम कीटनाशक जो है दवाएं ऐसे ही रख देते हैं या छिड़काव करते हैं कीटों को मारने के लिए, तो ऐसे में आप दस्ताने, मास्क और पूरे शरीर को ढकने वाला कपड़ा जरूर पहने, और कीचड़ वाली खेती में आप मजबूत और फिसलन रोधी जो जूते हैं ना, जैसे गमबूट वगैरह है, इनको आप पहने ताकि चोट लगने का खतरा कम हो, और बारिश का पानी खेत में अधिक समय तक जमा न रहने दे, नालियां बनाकर अतिरिक्त पानी बाहर निकाले ताकि जो आपकी फसल है, हमारी फसल है, उसकी जड़ें सुरक्षित रहे। और हाँ, आकाशीय बिजली से भी बचाव का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा गरज चमक शुरू होते हुए खेत का काम आप कर रहे हो तो तुरंत रोक दे, किसी पेड़ के नीचे बिल्कुल ना खड़े हो, और बिजली के खंभों और ये तारों से आप बिल्कुल दूर रहे, किसी सुरक्षित पक्की इमारत में शरण ले।
1: जी सरिता बहन, ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे किसान हैं वो अगर पानी ज्यादा है खेतों में तो उसका समाधान ढूंढें, उसको निकालें नहीं, क्योंकि जो फसल खड़ी है वो खराब भी हो सकती है, अगर धान की है तो अच्छी बात है, लेकिन और अन्य कोई बेलिए अपने फसल लगा रखी है तो उनको थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है, तो जल का निकासी का समाधान भी करना चाहिए, उसको सही जगह पे भेजने का प्रबंध करें, नालियों को साफ सुथरा रखें और जल संचयन जरूर करें, उसमें आपको फायदा भी होगा और हमारा खेत भी सुरक्षित रहेगा।
0: और वीरेन भाई, हम तो यही कहेंगे कि मौसम की जो चेतावनियां आती है ना, उसका बिल्कुल पालन करें, अफवाहों पर विश्वास ना करें, और आपातकालीन नंबर अपने पास रखें, और जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनका इस मौसम में, इस तरह का अगर मौसम खराब हो रहा है तो आप उनका विशेष ध्यान दें। और कहते हैं ना वीरेन भाई, बरसात का आनंद तभी है जब हम सुरक्षित रहें।
1: तो इन सब जानकारियों के साथ आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम हम यहीं पर समेटते हैं, आज्ञा दीजिए हम दोनों को, मैं वीरेंद्र पाल सिंह और
0: सरिता शर्मा लेते हैं हम आपसे इजाजत, सभी भाई बहनों को राम राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 और ठीक 20 सेकंड्स हो रहे हैं। हाजिर हैं हम लेकर कुछ चुनिंदा गजलें खास आपके लिए। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गजल जगजीत सिंह साहब की पुरसुकून आवाज में।

आशा भोसले और जगजीत सिंह साहब को अभी आपने सुना, और चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं चंदन दास साहब की आवाज़।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया और दिल्ली पुलिस ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने ताहिर हुसैन को दंगा फैलाने, मारपीट, आपराधिक बल का इस्तेमाल और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। फरवरी 2020 में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया जाना पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। श्री मिश्रा ने पिछली सरकार पर राहत और चिकित्सा सहायता में पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर भी आलोचना की। उन्होंने आम आदमी पार्टी नेताओं से जवाबदेही की मांग की और हिंसा, सड़क जाम तथा हमलों के खिलाफ कार्रवाई न करने की उनकी कथित नाकामी पर भी सवाल उठाए।
2: अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला अंकित शर्मा जी की हत्या के खिलाफ, एक बयान नहीं दिया उन्होंने। पूरी केजरीवाल सरकार का कोई मंत्री किसी भी हिंदू पीड़ित के घर में मिलने के लिए नहीं गया, उनको न्याय देने के लिए नहीं गया। ये सवाल है जो आज दिल्ली और देश की जनता पूछ रही है कि जो हिंदुओं के बच्चे मारे गए, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनको गोली लगी, जिनको पत्थर लगे, जिनके रिक्शे जले, जिनका व्यापार नष्ट हुआ, बच्चों को स्कूल आने जाने से रोका गया, जिनको बीमारों को अस्पताल जाने से रोका गया, जिनकी सड़कें बंद कर दी गई, उनके समर्थन में केजरीवाल, सिसोदिया, संजय, आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी क्यों नहीं आया सड़क खुलवाने के लिए।
1: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा की वित्तीय समितियों और विभाग संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्षों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का आयोजन वित्तीय समितियों और विभाग संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्षों को इनके संवैधानिक, प्रक्रियात्मक और कार्यात्मक पहलुओं से परिचित कराने के उद्देश्य से किया गया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज शिक्षा विभाग के पोर्टल एड्यूलाइफ 2.0 लॉन्च किया। महापौर ने दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर आधारित अचीवमेंट क्रॉनिकल नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा प्रदान करने की दिशा में नगर निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दिल्ली सरकार 25 जुलाई को पहला अभिभावक शिक्षक संवाद आयोजित करेगी। ये पहल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों और विद्यालयों की साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये संवाद पूरी तरह बाल सुरक्षा और संरक्षण विषय को समर्पित होगा। साथ ही जुलाई में पूरे दिल्ली में मनाए जा रहे बाल सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम भी होगा। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अवसर पर अभिभावकों के साथ बाल सुरक्षा, पॉस्को अधिनियम 2012, बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य तथा डिजिटल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत संवाद आयोजित करें। संवाद कार्यक्रम के बारे में बताते हुए शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा किसी भी रिपोर्ट कार्ड से अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा तभी सार्थक है जब बच्चे भय मुक्त वातावरण में सीख सकें। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा केवल विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने तक सीमित नहीं रह सकती। प्रत्येक बच्चे के लिए सबसे पहला सुरक्षा कवच उसके अभिभावक होते हैं, इसलिए शिक्षकों और अभिभावकों के बीच नियमित एवं सार्थक संवाद एक सुरक्षित एवं संवेदनशील वातावरण तैयार करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्री सूद ने कहा कि सुरक्षित विद्यालयों का निर्माण केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये विद्यालय अभिभावकों और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। इस वर्ष का कार्यक्रम में 130 देशों के 60,000 से अधिक खरीदार और प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: यह कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों, कारीगरों, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक साथ लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से प्रेरित होकर भारत टेक्स 2026 कपड़ा मूल्य श्रृंखला में व्यवसाय, निवेश, नवाचार, नीति संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ है। इस आयोजन में 20 से अधिक

0: देशों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, राष्ट्रीय उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और विचारक सहित 350 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
1: नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। यह भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प विरासत का उत्सव है। इस महोत्सव में 48 कारीगरों और बुनकरों के साथ साथ राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के पूर्व विद्यार्थियों के 12 डिजाइन आधारित हस्तशिल्प और हथकरघा ब्रांड द्वारा बनाए गए हाथ से बने और हाथ से बुने उत्पाद शामिल है। ये महोत्सव इस महीने की 19 तारीख तक चलेगा।
2: इस विशेष पहल को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा भारत की उत्कृष्ट शिल्पकला को समकालीन और आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रदर्शित शिल्पों में गुलाबी मीनाकारी, स्टोन इनले, डोकरा मेटल क्राफ्ट, संगीत वाद्यंत्र, पांडुलिपि पेंटिंग, लकड़ी पर बोन इनले, उस्ता कला, पिछवाई कला, सोजनी कढ़ाई, मोलेला क्ले क्राफ्ट, जयपुर की ब्लू पॉटरी, सिल्वर फिलीग्री और चेरियाल पेंटिंग शामिल है। आगंतुकों को पारंपरिक शिल्प तकनीकों के लाइव प्रदर्शन देखने का मौका भी मिलेगा, जिससे उन्हें भारत की सदियों पुरानी कारीगरी का एक शानदार अनुभव मिलेगा। यह कार्यक्रम भारत के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 से जुड़ा हुआ है, जो आज से 17 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
1: भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से दिल्ली मंडल के शामली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य संपर्क और पहुंच में सुधार के इरादे से देश भर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। इस योजना में संपर्क और पहुंच में सुधार के लिए सड़कों, फुटपाथों और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। दिल्ली में दशकों पुराने कूड़े के पहाड़ों के वैज्ञानिक निस्तारण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही मौजूद रहे। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान गाजीपुर डंप साइट समेत भलसवा और ओखला लैंडफिल साइटों की प्रगति का जायजा लिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गाजीपुर डंप साइट पर बायोमाइनिंग और रेमेडिएशन के कार्यों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, ताकि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिल सके और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हो। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अर्जुन शर्मा।
1: रोहिणी और आसपास के इलाकों के निवासियों के हित के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने मुख्य अंडरग्राउंड ट्रंक आउटफॉल ड्रेन की सफाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इसमें 10,000 मीट्रिक टन से अधिक जमा हुई गाद और कचरे को हटाया गया। ये अभियान उप राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश के बाद चलाया गया। इस पहल का उद्देश्य मानसून के दौरान बारिश के पानी की आसान निकासी सुनिश्चित करना और इलाके में जल भराव के जोखिम को कम करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि कुरियर डिलीवरी के बहाने आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ 2,47,000 की धोखाधड़ी की। गिरोह के अन्य संपर्कों की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने नंदनगरी इलाके में एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 9 किलो से अधिक का मादक पदार्थ और 353 क्वार्टर अवैध देसी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नंदनगरी थाने में आबकारी अधिनियम और NDPS एक्ट के तहत 2 अलग अलग FIR दर्ज की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार खेल के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने, कोचिंग सुविधाओं में सुधार करने और खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
4: स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, प्राइज मनी की बात हो, फैसिलिटीज की बात हो, कोचेस की बात हो, हम हर एक विषय जो उनसे छूता हुआ है उस पे काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि दिल्ली के हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को वो मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जिससे कि वो ना केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सके।
1: इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए हर स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
5: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम खेलों के इकोसिस्टम को तैयार करें, हर स्टेडियम में नेशनल और इंटरनेशनल की तैयारी करने वाले, स्टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए हमने साधनों की व्यवस्था की है, उनको खेलने के लिए अवसर देने के लिए उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। साथ ही साथ दिल्ली में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले लोगों को सबसे ज्यादा इनाम राशि घोषित की है। हम दिल्ली को खेलों की राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते हैं।
1: चैंपियनशिप इस महीने की 27 तारीख से अगले महीने की 2 तारीख तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के अंतर्गत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज वेव्स के तहत एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सृजकों की पहचान करना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनके कौशल को बेहतर बनाना है। संगीत नाटक अकादमी कल देशव्यापी राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव 2026 का आयोजन करेगा। महाकवि कालिदास जयंती के अवसर पर आयोजित ये महोत्सव राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष को समर्पित है। ये महोत्सव कल शाम 6 बजे से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ नाटकों के मंचन के साथ शुरू होगा। इस महोत्सव का विषय वंदे मातरम भारतीय रंगमंच के माध्यम से देशभक्ति की भावना है। दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया और दिल्ली पुलिस ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

Hello, salam, namaste, and a very warm welcome to your very own program, Geet Malika. और आज की गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ ही आपकी मितवा आपकी अपनी दीप्ति। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी की भागदौड़ में अगर कुछ पल कुछ लम्हे सुकून के मिल जाएं, तो फिर हर सफर आसान होने लगता है। तो बस इन्हीं खूबसूरत लम्हों को आपके नाम करने के लिए हाजिर है हम लेकर यादों की सोंधी सी खुशबू और गीतों में अपने पन की गर्माहट। तो आप जहां भी हैं दीजिए हमें थोड़ी सी अटेंशन और प्यारी सी मुस्कुराहट और चुरा लीजिए अपने लिए सिर्फ अपने लिए कुछ खास पल हमारे साथ विद अ सिंपल कप ऑफ कॉफी।

संग एक सिंपल सी कॉफी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अच्छी कॉफी और अच्छा साथ मिलते तो मुश्किल से हैं, लेकिन अगर एक बार किस्मत से दोनों मिल जाए ना तो दोनों का खुमार जल्दी नहीं उतरता। और जब जिंदगी की भाग दौड़ में कोई ऐसा साथ हो जिसके संग एक सिंपल सी कॉफी का कप लाइफ को किक देने लगे तो पांव जमीन पर ठहर पाना थोड़ा तो मुश्किल हो जाते हैं, है ना। तभी एहसास होता है कि रिश्तों की खूबसूरती दरअसल बड़े बड़े दावों में, बड़े बड़े वादों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी नन्ही नन्ही बातों में छुपी होती हैं, जहाँ किसी का साथ ही सबसे खूबसूरत एहसास बनता जाता है।

वैसे दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में कुछ मुलाकातें प्लान्ड नहीं होती, बस हो जाती हैं। और सबसे मजेदार बात ये होती है कि वही अनप्लान्ड मुलाकातें अक्सर सबसे यादगार कहानी बन जाती हैं। पहले एक सिंपल सी हेलो, फिर कॉफी का बहाना और फिर लंबी लंबी बातें, और देखते ही देखते मोबाइल की बैटरी से ज्यादा दिल की धड़कनें चार्ज रहने लगती हैं, और फिर हर लम्हा अपना सा लगने लगता है, हर मौसम थोड़ा सा और हसीन हो जाता है, हर मुस्कुराहट थोड़ी सी और खिल जाती है। चलिए मिलवाते हैं आपको इसी एहसास से इस गीत के जरिए।

वैसे ये तो सच है कि कुछ लोग ना होते बड़े कमाल के हैं, जिनसे मिलके लाइफ थोड़ी अपग्रेडेड हो जाती है। बस एक बार मुलाकात की ज़रूरत होती है, उसके बाद पूरा दिन ही अपग्रेड अपडेट हो जाता है, और जिनसे मिलकर चाय ना थोड़ी सी ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है, कॉफ़ी थोड़ी सी और लंबी चलने लगती है, और बिना वजह चेहरे पर मुस्कान भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। वैसे दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो शब्द है ना कुछ, ये है बड़ा दिलचस्प। कभी कुछ बातें हो जाती हैं, कभी कुछ यादें बन जाती हैं, कभी कुछ हंसी बांट ली जाती है, और कभी कभी बिना किसी वजह मूड बस कुछ यूं ही शानदार सा फील करने लगता है। और शायद जिंदगी का असली मज़ा भी इसी कुछ कुछ में छिपा है। हर बात का कारण ढूंढना ज़रूरी नहीं होता, कुछ पल बस जीने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं।

जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है तो हम उनको याद दिला दें कि आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को। हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 8:24 और प्रोग्राम चल रहा है गीत मालिका। आपके साथ हूँ मैं, आपकी मितवा, आपकी दीप्ति, आपकी अपनी साथी, और हम बात कर रहे हैं कुछ कुछ पर। तो वैसे ये जो दिल और दिल की जो बातें होती हैं ना, ये थोड़ी थोड़ी या कह लें कुछ कुछ अजीब तो होती हैं भाई। सबसे पहले तो ये आपका साथ छोड़ता है मुस्कुराहट के साथ। कैसे? कभी तो बैठे बिठाए आप मुस्कुरा देंगे विदाउट एनी रीज़न, और कभी कभी बिना किसी रीज़न के ये मुस्कुराहट आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, और ये होता है बड़ा ही टेंशन वाला काम। और इस बिना वजह मुस्कुराने, बिना वजह किसी पुराने गाने पर अटक जाने को जो फीलिंग होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा लेते हैं हमारे दोस्त। उनको बैठे बिठाए मिल जाता है एक एंटरटेनमेंट, क्योंकि हम तो उलझे हुए हैं ना अपने दिल की बातों में, और वो ले रहे हैं मज़े हमारी हरकतों से।

वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से ना कुछ दिन ऐसे भी होने चाहिए जहाँ वजह कम हो, मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, जहाँ चाय अच्छी लगे, दोस्तों के साथ मौसम अच्छे लगे, गाने अच्छे लगे और दिल बस अपनी ही धुन पर चलने लगे।

आप सुन रहे थे के साहब को फिल्म काइट्स में, और ये जो गीत था दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इस गीत में एक खास बात देखी आपने, ये जो दिल है ना इसका अलग ही ड्रामा चल रहा है। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब तक शांति से चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही जिंदगी में कोई मज़ेदार सा ट्विस्ट आया, बस जनाब को क्वेश्चंस हर तरफ क्वेश्चन मार्क्स दिखने लग गए, जैसे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो इन्हीं को मिली है। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, और फिर क्वेश्चंस जब आते हैं ना दिमाग में तो ऑफ कोर्स बढ़ते भी थोड़े क्वेश्चन की ही तरफ है, अपने आप से सवाल पूछने की तरफ कि अब पता नहीं काबिल है या नहीं है। लेकिन देखिए अब जो भी है सच क्या है ये तो दिल ही जाने, लेकिन अगर दिल खुश हो ना तो दुनिया थोड़ी सी और कलरफुल हो जाती है, और मन मन कुछ अलग ही गीत गुनगुनाने लगता है।

अच्छा, ये भी बड़ी मजेदार बात है ना कि जिंदगी में ज्यादा सवाल हमें एग्जाम में नहीं बल्कि अपने दिमाग में आते हैं, और आंसर भी सबसे ज्यादा खुद को ही करना होता है। क्वेश्चंस भी कैसे होते हैं, ये सब ठीक तो हो रहा है ना, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, यार सब ठीक तो चल रहा है ना। और कमाल की बात यह है कि आधे सवालों का जवाब हम खुद को नहीं हमारे दोस्त हमें देते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से, अरे बिल्कुल ठीक है, मैं साथ हूँ तुम्हारे। और यकीन मानिए, अगर आपके साथ कोई ऐसा दोस्त है या कोई भी ऐसा शख्स है जिसने ये कह दिया कि हाँ तुम करो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो आपसे ज़्यादा रिच, आपसे ज़्यादा अमीर और कोई नहीं। ऐसे इंसान को अपने साथ पकड़ कर जकड़ कर रखिए, जाने मत दीजिए, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपका साथ ना कभी आपके हल्के में और ना ही कभी भारी में छोड़ते हैं, और आप उन बहुत कम लोगों में शुमार हैं जिनका साथ देने के लिए कोई खड़ा होता है।

सच कह रही हूँ दोस्तों, कुछ खास लोग ना हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे आते हैं जिनके आने से ही लाइफ में कुछ जादू सा छा जाता है। कुछ जादू की तरह आते हैं ऐसे लोग जिनके आने भर से, जिनके होने भर से ओवर थिंकिंग छुट्टी पर चली जाती है और चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। तो बस बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर। ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा सोच विचार नहीं, बनाते हैं मूड को थोड़ा सा शानदार और आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में ये बेहद शानदार गीत। इसी गीत के साथ में मैं यानी दीप्ति पाठक आपसे इस रोलर कोस्टर राइड को एंड करने की इजाजत चाहूंगी। मिलूंगी आपसे फिर कभी बहुत जल्द यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। तब तक आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही

0: तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: This is also one of the most ambitious.
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
3: SME, innovation, labor, environment and gender.
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
5: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
6: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
7: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
8: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
10: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
9: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry.
10: We had issued a statement post-summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter that these attacks must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia.
9: Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation.
11: Rather than addressing the legitimate grievances of the local population, the Pakistani state has responded with excessive police brutality, blocking essential supplies, enforcing internet blackouts, and deploying lethal force against unarmed civilians that has led to tragic fatalities. We expect and hope that the international community will hold Pakistan fully accountable to these egregious abuses and misdeeds.
9: The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey.
12: This is one of first FTA of its kind, which establishes future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
9: More from our correspondent.
2: This agreement has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The simultaneous enforcement of the CETA and the DCC will open up significant new opportunities for India's export. Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariff across several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exporters in the UK market, generate new opportunity for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. With Rohan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
9: In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. India's largest global textile event, BharatTex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said, BharatTex is the vision of the Prime Minister. He said, it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the BharatTex. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textile sector. The government today released the country's first trial index of services production, or ISP, for 19 subsectors, providing for the first time a monthly measure of short-term activity in the formal services sector. The inaugural index, with 2024-25 as the base year, covers April 2026 and accounts for nearly 60% of India's services sector. ISP will be released on the 29th of every month. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.com.

0: Legislative Council and Minister was marked by unwavering commitment and dedicated service. Mr. Modi also conveyed his heartfelt condolences to the bereaved family, supporters and his admirers. Union Minister of Civil Aviation Kinjarappu Ram Mohan Naidu announced that Dholera International Airport will be operational within 3 months. Talking to media after reviewing the progress of the project, the minister said 80% project work completed and the government aims to complete the remaining terminal construction and secure the necessary licensing within the next 3 months to commence flight operations. Benchmark domestic equity indices ended around 0.7% lower today. We have a report.
1: Sensex fell by 561 points to close at 77,055, while Nifty declined by 159 points to settle at 24,052. In the broader market on the NSE, the Nifty Midcap 100 Index slipped 0.44%, while the Nifty Smallcap 100 Index fell nearly 1%. In the foreign exchange market today, the rupee depreciated by 58 paise to close at 96 rupees and 20 paise against the US dollar. With Abhishek report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: On to sports. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In cricket, England have set a target of 259 runs for India in the first of the three-match ODI series at Edgbaston, Birmingham. In reply, India were 97 for 2 in 19 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. And in men's cricket, India chased target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत ने आबनाई हुरमुज के रास्ते महफूज और आजादाना नकलो हमल की बात दोहराई है। उसने महाजराई के देरीना हल की खातिर ईरान और अमेरिका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। फीफा आलमी कप में आज रात टेक्सस में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों और अमरीका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र वो मगरबी एशिया के वाकयात पर करीबी नज़र रख रही है। वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात दोहराई कि भारत आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज बिला रुकावट नकलो हमल और तजारती सरगर्मियों की हिमायत करता है।
3: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
2: भारत ने आज आबनाई हुरमुज से गुजरने के दौरान दो बहरी जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मोम्बासा पर हमलों पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। इन दोनों बहरी जहाजों में मजमूई तौर पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने किसानों और घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। पंचायती राज मंत्रालय के आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के तहत आयोजित 2 दिवसीय वर्चुअल आउटरीच कार्यशाला कल संपन्न हो गई। कार्यशाला में पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर जानकारी दी गई। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सस में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 1-0 से मैच में बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned yesterday by the ministry. Responding to the question on protest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, Mr. Jaiswal said that the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to the media, Mr. Singh said Bharat Tex is the vision of Prime Minister. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textile sector. Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi yesterday chaired a meeting with the delegation of the National Energy Council of Indonesia. In a social media post, Mr. Joshi said that during the meeting, he shared India's steadfast progress in taking clean energy directly to our farmers and households. The minister also noted that under the PM Kusum scheme, 2.7 million agricultural pumps have been solarized across the country. He also highlighted the success of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, which has benefited 4.7 million households. Mr. Joshi urged the delegation to visit the projects and witness this transformation on the ground. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested proclaimed offender Shibu Kumar Singh, one of the accused in the Sukanta Ghosh murder case. He was arrested yesterday from his hideout at Rai Ganj Road in Gorakhpur, where he was allegedly living under the assumed name of Akhilesh Kumar Shahi. According to the CBI, the accused had been absconding for several years and has been declared a proclaimed offender in September 2016. The CBI said he was apprehended on the basis of human intelligence and technical inputs. After obtaining a transit warrant, the accused will be taken to Kolkata today and produced before the competent authority. Nepal and India yesterday held meetings with a focus on strengthening bilateral cooperation in the energy sector, with emphasis on cross-border electricity trade, officials said. Minister for Energy, Water Resources and Irrigation, Biraj Bhaktashrestha, held a productive discussion with Power Secretary Pankaj Agrawal and Additional Foreign Secretary Munu Mahawar of the Government of India in Kathmandu yesterday. In cricket, India defeated England by 6 wickets in the first of the 3-match ODI series at Edgbaston in Birmingham last night. Chasing a target of 259 runs set by England, India scored 262 for 4

0: in 45.2 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 1:10 हो चुके हैं, समय है कार्यक्रम गीत सुनने का, गोल्डन एरा फिल्म संगीत। आइए श्रोताओं सुनते हैं गीत सुनहरे, यानी कि वो गीत जो एक ऐसे ज़माने की जब गीतों को बनाने में बहुत मशक्क़त लगती थी। जी हाँ, उसी समय की बात करेंगे इस कार्यक्रम में। आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती, और शुरुआत करते हैं इस गीत से।

और जब पुरानी बातें होती हैं तो वो बातें ज़रूर होती हैं जहाँ सुकून देने वाली बात हो। जी हाँ, पुरानी गीतों में सुकून वाली बातें, ऐसे उसके शब्द, ऐसे उसके बोल जिससे दिल आपका कहाँ चला जाए पता ही ना चले। जी हाँ, खो जाने वाला वो गीत, वो तो यही गीत है। आइए सुनते हैं।

रफ़ी जी की अगर आवाज़ में कोई भी गीत क्यों ना चल जाए, शब्द इतने खूबसूरत निकल कर आते हैं, यूं कहें तो शब्द निखर जाते हैं। फिलहाल तो आगे चलते हैं अगले गीत की ओर, जहां तलत महमूद की आवाज़ बिखेर कर एक इतनी खूबसूरत गीत को खूबसूरत बनाया गया है। और खूबसूरत क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये वो शब्द हैं जिन शब्दों को हम आज अपने कानों में घुलने गए मौके ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो ज़माना, वो सुनहरा ज़माना, जी हाँ गोल्डन एरा, जहाँ पर ये गीत हमारे कानों में पड़ते थे और हम खुश हो जाते थे क्योंकि सुकून मिलता था इन गीतों से, उन्हीं गीतों को ढूंढ कर लाई हूँ आपके लिए। सुनते हैं तलत महमूद की आवाज़ में ये गीत।

फिर क्या है, जब हम गीता दादा और मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे हैं तो फिर हम शमशाद बेगम को क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि वो ज़माना ही तो इन्हीं का था। और ज़माने की बात करें तो वो गीत जब दर्द में बनते थे, जैसे कि हम दर्द का अफसाना। जी हाँ, शमशाद बेगम की आवाज़ में इस गीत को सुनिए, बहुत ही खूबसूरत है।

और फिर जब हम ये कहते हैं कि किसी को कोई पसंद कर रहा होता है और फिर मोहब्बत में किसी को अपने पास बुलाना चाहता है, तो जब इस बात पर कोई गीत बना तो उनमें से एक गीत ऐसा रहा जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ। वो गीत कौन था? जी हाँ, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत ऐसा है जो आप सुनेंगे तो कहेंगे कि वाकई में इस गीत को सुनना ही सबसे खूबसूरत बात होगी, क्योंकि ये आवाज़ बिल्कुल दिल से निकल कर आ रही है।

0: साज और आवाज, इसी फिल्म से आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में इस गीत को, साज हो तुम आवाज हो मैं। और जब साज आवाज़ की बात होती है तो हम पुराने क्यों नहीं बात करें, क्योंकि वो समय वो ज़माना ही वही था जहाँ आवाज़ में राग, साज में वो धुन और समय वो खूबसूरत, जहाँ आप किसी पे भरोसा भी कर सकते हो, किसी से मोहब्बत भी कर सकते हो। एक समय होता है शायद जब हर कुछ और हर समय हमारे हिसाब से चलता है, और फिर एक ज़माना आता है वो सब कुछ बदल जाता है। तो फिर क्या करते हैं हम फिर उन ज़माने को याद करते हैं जिसमें सब कुछ हमारे तरीके से होता है। वाकई में जब फिल्मों की बात करते हैं और गीतों की बात करते हैं तो फिर ऐसे गीत को सुनने का मन करता है जो हमारे अनुकूल हो, हमारे दिल के करीब हो। और जब फिर दिल के करीब की बात आती है तो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं वो गीत जो हमारे सिचुएशन, हमारे समय के हिसाब से हमें जीने दे और हमारे समय के हिसाब से हमारे जीवन को खूबसूरत बना दे। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है।
1: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए।
2: क्या?
1: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
2: सपनों में देखा होगा
1: जी। मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

और कहते हैं ना कि गीत गाने वाले जब गीतों में उन आवाज़ को, उन शब्दों को लेकर ढालते हैं जहाँ हम ये कहते हैं कि अगर तुम हमारे नहीं होते तो ये दुनिया क्या होती, या फिर ये गीत क्या होते। और जब ऐसे गीत बनते हैं वो हिट तो होते ही हैं। और एक ज़माने का ये गीत मुकेश की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

सुनहरे गीत, गोल्डन एरा के फिल्म संगीत, और इन गीतों में हम सुन रहे हैं वो समय, उनकी झलक जो हमारे पास तो नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ ने आज तक हमारे ऊपर जादू किया हुआ है। और वक्त का देखिए पता ही नहीं चला, इन गीतों को सुनने के बाद ऐसा ही होता है, उन जादू में, उन भंवर में हम खोते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं और लगता है इसी में डूबते जाएं। लेकिन क्या कहते हैं, समय ख़त्म होने से पहले एक और गीत सुनते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली की AIR लाइव न्यूज 24x7 से। 2 बजने को है, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार। आइए श्रोताओं, सुनते हैं हिंदी में समाचार सबसे पहले, फिर सुनते हैं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने

0: दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने ईरान के सामने हाल की घटनाओं को लेकर अपनी कड़ी चिंता और विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और कई भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 4 अहम मुद्दों, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, श्रम बाजार को औपचारिक बनाना और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और समावेश को बढ़ाने पर चर्चा होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्षयान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सस में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 2-0 से मैच में बढ़त बना ली है। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में
1: We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Albania and MT Mombasa, during their transit to the Strait of Hormuz. While described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said Bharat Tex is the vision of the Prime Minister. He said it is now an international event and in every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with the different countries are benefiting the textile sector. India will host the 12th BRICS Labour and Employment Ministers meeting in Hyderabad from today. The 2-day meeting will bring together labour and employment ministers and senior officials from BRICS member countries under India's BRICS chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya will chair the meeting. The ministers will deliberate on 4 priority areas, including advancing social security, formalisation of labour markets and enhancing women's participation and inclusion in the workforce. The meeting will also consider and adopt a draft declaration prepared by the Employment Working Group. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested proclaimed offender Shibu Kumar Singh, one of the accused, in the Sukanta Ghosh murder case. He was arrested yesterday from his hideout at Raiganj Road in Gorakhpur, where he was allegedly living under the assumed name of Akhilesh Kumar Shahi. According to the CBI, the accused had been absconding for several years and was declared a proclaimed offender in 2016. The CBI said he was apprehended on the basis of human intelligence and technical inputs. After obtaining a transit warrant, the accused will be taken to Kolkata today and produced before the competent court. Spain stomped into the FIFA

0: World Cup 2026 after producing a commanding 2-0 victory over France in the semi-final at Dallas Stadium in Texas, US. Now France will face the winner of the second semi-final between Argentina and England, scheduled to be held at Atlanta Stadium on Wednesday at 12:30 p.m. Indian time. In cricket, India defeated England by 6 wickets in the first of 3-match ODI series at Edgbaston in Birmingham last night. Chasing a target of 259 runs set by England, India scored 262 for 4 in 45.2 overs. Akshar Patel was adjudged player of the match. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 मैं आपकी दोस्त कीर्ति हाजिर हूँ गीत व गजलों का कार्यक्रम लेकर, और शुरुआत कर रहे हैं हम इस गजल से कि हम पूरी उम्र तरसते रहे अपने घर को, जिस राह जाते थे वहां घर ढूंढते थे, पर तुमने इतनी सी बात कहकर हमारा दिल जीत लिया कि ये तेरा घर, ये मेरा घर।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह व चित्रा सिंह के स्वर में ये गजल। अगली गजल पेश है गुलाम अली के स्वर में।

अनुराधा पोडवाल और पंकज उदास की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गजल। अगली गजल पेश है हरिहरन के स्वर में, आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे थे चित्रा सिंह के स्वर में ये गजल। अब आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसमें आवाज है पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की।

पंकज उदास की आवाज़ के बाद अब प्रस्तुत है पंकज, माफ कीजिएगा, मनहर उदास की आवाज़ में ये गीत, एक था बंजारा।

इस गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम के अंत में एक गजल जो आपकी दिल को शायद कुछ पुरानी यादों में या दर्द में लेके चली जाएगी, पर ये जिंदगी की असलियत है और हर किसी की जिंदगी में अपने खास के लिए एक ना एक दिन ये आता है। स्वर जगजीत सिंह का।

0: इसी गजल के साथ अब गीत व गजलों का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। सुबह के 4 बज चुके हैं। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिए।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: कार्यक्रम का शुभारंभ हम भगवान अयप्पा की एक स्तुति से कर रहे हैं, स्वर के जे यशुदास का।
1: हरिवरासनम विश्वमोहनम हरिदधीश्वर।

अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में वायलिन वादन राग शुभ पंतुवरली में कलाकार हैं चंद्रशेखर, घटम पर संगत की है सुकन्या रामगोपाल ने।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत चंद्रशेखर का वायलिन वादन राग शुभा पंतुवरली में। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 46 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दे दें। कुछ ही देर में यानी कि 5:10 पर कार्यक्रम सुनिएगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। 6:10 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना।

वंदना के बाद 6:40 पर समय रहेगा चिंतन का, 6:45 पर रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड का भाग 117 सुनिएगा। संगीतिका का समय रहेगा 7:10। गीतों भरी गुड मॉर्निंग 7:30 पर, स्वरगंगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम 8:45 पर होगा। साइंस मैगजीन आप सुन सकेंगे 9:15 पर। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का समय रहेगा 9:30। विशेष फोन इन कार्यक्रम 10:10 पर होगा, बात फूलों की। सबरस का समय रहेगा 11:10। 11:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी सुन सकेंगे। दिन में 12:10 पर सुनेगा महिला कार्यक्रम

उर्दू मजलिस का समय रहेगा दोपहर 3:30। युववाणी लाइव का समय होगा सुबह 4:15। दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम ग्राम संसार का समय रहेगा शाम 6:30। कृषि जगत का समय होगा शाम 7:05। गजल व कव्वाली का आनंद लीजिएगा शाम 7:30 पर। श्रीनगर जगन्नाथ जी धाम की रथ यात्रा पर पूर्व लोकन आप सुन सकेंगे रात्रि 8:15 पर। चर्चा का विषय होगा रात्रि 9:30 पर।

0: 11:10 पर फिल्म संगीत आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा। ये थे कार्यक्रमों की रूपरेखा, अब समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की

0: रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगम के एस्बेस्टेन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and United Kingdom comes into force today. Simultaneously, the agreement on social security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of the tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK CETA as a defining milestone in India's trade journey. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz. India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT El Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Responding to a question on protests in POJK, Mr. Jaiswal said, "The ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation." India is currently operating 24 nuclear power reactors across 7 sites with a total installed capacity of 8.78 gigawatt. 10 more reactor units with a combined capacity of 8,000 megawatt are under construction. These reactors are pressurized heavy water reactors, boiling water reactors, and light water reactors. The country is mainly using natural uranium fuel to run the pressurized heavy water reactors to produce nuclear energy. Government said that India is steadily expanding its nuclear power program to strengthen the energy security

इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें।